0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: भोर सुहानी कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ। दोस्तों, हर कोई जानता है कि सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह तो आएगी ही, जीवन भी इसी तरह चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख।

बस यही प्रेरणादायक गीत हमें आगे बढ़ने के लिए कहते रहते हैं और ये समय भी यही कहता है कि आगे बढ़ती रहो।

दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कितनी बार ईश्वर को या किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं अगर कुछ बुरा होता है तो। लेकिन ये सब तो हमारे प्रारब्ध में किए गए कर्मों का ही लेखा जोखा होता है, तो फिर क्यों घबरा जाते हैं।

मोहम्मद रफीकी का इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है और अब आप सुनेंगे वंदे मातरम पंडित चंद्रशेखर वेज द्वारा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई 2026 सुबह के 5:53:33 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा बता देते हैं।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा अर्पण 6:10 पर। प्रस्तुति रहेगी बबीता शर्मा की। श्री रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:44 पर। छह बजकर 55 पर संस्कृत में समाचार होंगे, 7 हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार होंगे 7:05 पर।

गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम 7:10 पर होगा। आठ बजे हिंदी में समाचार होंगे और 8:15 पर अंग्रेजी में।

8:30 पर उर्दू में समाचार होंगे और म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम 8:45 पर होगा। प्रस्तुति रहेगी बबीता शर्मा की।

9 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 9:05 पर अंग्रेजी में। पर फिर से कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल लगी, जिसे पेश करेंगी नाज शेख। ये था आज के कार्यक्रम का लेखा जोखा। 6 बजने में कुछ ही पल बाकी हैं। आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बुधवार की इस सुहानी सुबह में आइए अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं अर्पण के जरिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार, सुप्रभात।

डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को लाया नहीं जा सकता, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: समय हो चला है 6:27 और 28 सेकंड। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत से परिपूर्ण अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है।

प्रशंसा परक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नवजीवन संचार किया जा सके तो निसंदेह ये सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।

वक्त हुआ 6:44:20 और आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड की अगली कड़ी।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रु।

0: सामाजिक अन्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोध प्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मन्त्रिणा पेनी वोंगः इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैण्ड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडादेशस्य टोरेण्टो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्णसम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधितवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer

सुबह सूर्योदय से लेकर शाम सूर्यास्त तक हर दिन और उसके बाद आने वाली रात भले ही एक से दिखते हों, लेकिन हमारे जीवन में हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। ठीक उसी तरह हम भी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर हर रोज गोल्ड सुप्रभात के जरिए एक नई उमंग के साथ हाजिर होते हैं। वक्त तो चला है 7:11 और 15 सेकेंड और आज साथ हूं मैं आपके बबीता। नमस्कार।

प्रचंड गर्मी के इस मौसम में अगर बचा के रखना है अपने आप को तो एक बात ध्यान रखें, अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अपने आप को हाइड्रेट रखें, थोड़े थोड़े समय पर पानी पीते रहें। 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 31 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम टेम्परेचर रहेगा आज, ऐसे में एहतियात जरूर बरतें। सूर्य उदय हो चुका है 5:25 पर और सूर्यास्त का वक्त होगा 7:12 पर। तो आइए, मौसम कैसा भी हो, हम FM गोल्ड पर आपको गानों की ठंडक पहुंचाते रहेंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त है 7:26 और 55 सेकेंड। आप सुन रहे हैं गोल्ड सुप्रभात 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। अगला गीत जो मैं लेकर आई हूं वो है 1971 में रिलीज हुई फिल्म तेरे मेरे सपने से।

0: सुप्रभात। AIR FM गोल्ड पर एक नई सुबह में कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज के अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग तन्वी।
1: गुड मॉर्निंग सरफिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस सरफिरोजी हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज Savere, and we are going to give you some latest information in the national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this particular day, that is 27th of May 2026. And today is Wednesday, so just want to wish you a very happy Wednesday.

0: This is the middle of the week and I hope you all feel energetic.
1: बिल्कुल तन्वी, आपने बात की कि नेशनल इंटरनेशनल खबरों से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, तो सबसे पहले देश की हलचल ले लेते हैं। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त तो सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: The Supreme Court will today pronounce its judgment on the batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India CJI Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenge the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under the Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950, and also the rules framed thereunder. Over the course of the proceedings, the Supreme Court issued interim directions designed to promote transparency and mitigate hardship among voters impacted by the SIR exercise across various states and union territories.
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं।
0: The Ministry of Railways has approved the launch of the country's first hydrogen-powered 10-coach DEMU train. The move marks a significant step towards promoting green and sustainable transportation in the railway sector. The train will run at the maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat using hydrogen fuel cells to generate power. The train will have a total power capacity of 1200 kilowatts. It will use distributed power rolling stock technology, which means the power system will be spread across the train coaches instead of being placed in just one locomotive.
1: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इस बीच राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में कल अधिकतम तापमान 44 से

0: 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
1: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: NASA has released details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to the moon as part of the US plans to build a lunar base. Amazon founder Jeff Bezos's space company Blue Origin is one of the several companies picked to build the machines. The US wants to land Americans back on the moon before President Donald Trump leaves office in 2028. But NASA is competing with China to return humans to the lunar surface, meaning the space agency is under pressure to appear to be winning the new space race. China is forging ahead with its own plans to land humans on the moon by 2030.
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को तुरंत अपना लंबित ई चालान भरना होगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ठग संदिग्ध भुगतान लिंक वाले फर्जी ई चालान नोटिस भेज रहे हैं। ऐसे अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से उपयोगकर्ताओं के मोबाइल पर एपीके फाइल स्वतः डाउनलोड हो सकती है जिससे व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा खतरे में पड़ सकता है। जांच इकाई ने लोगों को एसएमएस, सोशल मीडिया, ईमेल या किसी भी अज्ञात स्रोत से साझा की गई एपीके फाइलों को इंस्टॉल न करने की सलाह दी है।
2: And let's move on towards sports. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with three balls to spare. Rahul Tevatia was the top scorer with 68. Runs. For Royal Challengers Bengaluru, Jacob Duffy scalped three wickets while Bhuvaneshwar Kumar, Rasik Salamdar and Krunal Pandya took two wickets each. And today Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh Mohali at 7:30 PM. Gujarat Titans will now play the winner of the eliminator in qualifier two match for a place in the final.
0: केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: श्रोताओं, देश दुनिया की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों का हाल। तन्वी, कहां से शुरू कर रहे हैं?
2: लेट्स बिगिन विद चेन्नई।
0: जी,
2: तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय हैज अर्ज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इंस्ट्रक्ट ऑफिसर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द सेंट्रल वाटर कमीशन टू रिजेक्ट कर्नाटकाज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर मेकेदातु प्रोजेक्ट। ही अपील्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज कर्नाटका नॉट टू इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट्स विदाउट the concurrence of co-basin states. He noted that Karnataka government announced a Bhumi Puja for Mekedatu Reservoir project across the Kaveri River was in violation of the Supreme Court's judgment and the Kaveri Water Disputes Tribunal final award from 18th of February.
0: और अब रुख कर रहे हैं राजधानी दिल्ली का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की प्रगति पर व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शीत ऋतु के प्रारंभ होने से पहले प्रदूषण के स्तर में कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ईद उल जहा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों, अमन समिति, नागरिक भाईचारा समिति, नगर निगम अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अजित कुमार सिंघला ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर देने, स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
4: हमारे यहाँ डिजिटल अरेंजमेंट का प्लान हो चुका है। हमारे यहाँ टोटल 1100 के हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पे लगाया है। उसके अलावा भी 23 कंपनीज का आउटसाइड फोर्स का हमने रिक्वेस्ट की है, तो इन सभी को हमने डिफरेंट मस्जिदों पे और खासतौर पे जो मेजर और सेंसिटिव मस्जिद है, 27 मेजर मस्जिद है और 22 सेंसिटिव मस्जिद है और वेरियस ईदगाह भी है, तो उनके यहाँ पे हमने इन सभी का अरेंजमेंट हमने प्वाइंट वाइज डिप्लॉयमेंट की है।
0: सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
2: And moving towards Bangalore, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has welcomed the Supreme Court decision to dismiss the review petition filed by Tamil Nadu government against Mekedatu project on Kaveri River. He expressed happiness over the verdict and conveyed his gratitude on behalf of the people of Karnataka. He informed that the Supreme Court had already issued clear instructions on the project earlier and imposed a condition that Tamil Nadu's share of 177 TMC of river water flow must be guaranteed. He asked the central government to take final decision regarding the project clearance and added that as per their directions, the state is in the process of submitting the revised DPR for this balancing reservoir and hydroelectric venture over Kaveri River around 95 kilometers away from Bangalore. And we have some more news from Bangalore itself. Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has said that AI is not merely a technology but a system based on trust, responsibility and transparency along with citizen welfare at its core. She was speaking after inaugurating the Artificial Intelligence AI Implementation Workshop organized by the Center for E-Governance, a state government department. Senior government officials, policy makers, industry leaders, academia, startups and ecosystem partners from across the state deliberated on building a scalable, secure and citizen-centric AI ecosystem for governance during the workshop.
0: और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कल सायन स्थित लोकमान्य तिलक अस्पताल में टीबी मुक्त मुंबई अभियान का शुभारंभ किया। भिंड मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र लोक भवन की संयुक्त पहल के अंतर्गत यह अभियान मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों पर केंद्रित होगा। धारावी में एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि मुंबई को टीबी मुक्त बनाना न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। इससे पहले राज्यपाल ने धारावी स्थित एकनाथ राव गायकवाड़ स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया, डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की और टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए। महाराष्ट्र सरकार मुंबई में सरकारी जमीन पर बने सभी जिमखानों का निरीक्षण करेगी। ये कदम पट्टे की शर्तों, किराए के नियमों और अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में ऐसे लगभग 10 जिमखाने हैं जिनमें दक्षिण मुंबई का ऐतिहासिक बॉम्बे जिमखाना भी शामिल है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी करती है और सुनवाई भी करती है। सरकारी जमीन पर स्थित जिमखानों के लिए पट्टे संबंधी अनुपालन संचालन और किराया नीतियों की भी समीक्षा कर रही है.
2: एंड अबाउट हैदराबाद, तेलंगाना गवर्नमेंट्स 99 डे पीपल्स गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान हैज बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड. द कैबिनेट सब कमिटी हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इट्स क्लोजर विद ग्रैंड इवेंट्स फ्रॉम 2nd ऑफ जून टू 12th अक्रॉस द स्टेट. डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भाटी विक्रमार्का चेयर्ड द कैबिनेट सब कमिटी meeting on Tuesday.

0: Officials were instructed to organize various programs during the closure celebrations, including Environmental Conservation Week, road safety campaigns, anti-drug awareness drives, women and child protection initiatives, housing projects, tourism promotion and renewable energy project inaugurations. The government is implementing the Indira Amma Family Life Insurance Scheme to provide social security to each and every family. The Cabinet Subcommittee discussed this scheme extensively, emphasizing that all eligible families must be covered.
1: और अब बात करते हैं अपने आखिरी महानगर की. पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया. अदालती कार्यवाही के दौरान एनआईए ने इस मामले के संबंध में 2 केस डायरी सौंपी. एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई. और श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से. राजधानी दिल्ली में आज लू का प्रकोप रहेगा. न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और तन्वी, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
0: लेट्स बिगिन विद चेन्नई. चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 40 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद वन और टू स्पेल्स ऑफ रेन और इवन थंडर शावर्स. द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्रीज एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज. नाउ हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover between a minimum of 30 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
1: श्रोताओं, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि 27 मई यानी आज का दिन किन कारणों से इतिहास में दर्ज हो गया. तो सबसे पहले किस साल में चल रहे हैं तन्वी?
0: लेट्स बिगिन विद 1660. द ट्रीटी ऑफ कोपेनहेगन वॉज साइंड बिटवीन स्वीडन एंड डेनमार्क नॉर्वे मार्क्ड द एंड ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉरफेयर बिटवीन द टू पावर्स इन द रीजन.
1: 1703 में आज ही के दिन पीटर द ग्रेट ने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की जो बाद में रूस की शाही राजधानी बनी.
0: इन 1813 अमेरिकन फोर्सेस कैप्चर्ड फोर्ट जॉर्ज इन अपर कनाडा व्हिच इज मॉडर्न डे नाइग्रा ऑन द लेक ओंटारियो. एंड इन 1916-28 यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन एड्रेस्ड द लीग टू इनफोर्स पीस फाउंडेड इन 1915 एंड गेव पब्लिक सपोर्ट टू द आइडिया ऑफ द लीग ऑफ.
1: 1930 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग बनकर तैयार हुई जो कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही. लेकिन अगले साल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने यह खिताब अपने नाम कर लिया. और आज ही के दिन 1933 में वॉल्ट डिज्नी द्वारा एनिमेटेड लघु फिल्म द थ्री लिटिल पिग्स का रिलीज होना एनिमेशन के इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.
0: In 1937, the Golden Gate Bridge opened to the public, becoming an iconic symbol of San Francisco.
1: आज ही के दिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को ब्रिटिश नौसेना ने डुबो दिया.
0: In 1942, Czech resistance fighters attempted to assassinate Nazi leader Reinhard Heydrich in Prague.
1: 1964 में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नई दिल्ली में निधन हुआ. और 1999 में आज ही के दिन बोत्सवाना की पुले क्वेलागो वर्ष 1999 की मिस यूनिवर्स चुनी गई. आज ही के दिन विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार 1999 में ही सोफी पुरस्कार डरमन हैली और थॉमस कैरी को प्रदान किया गया. श्रोताओं, इतिहास के बाद जिक्र कर लेते हैं उन खास व्यक्तित्वों का भी जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस

0: दुनिया से विदा हुए। सबसे पहले याद कर रहे हैं तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये मराठी लेखक थे। इन्हें तर्क तीर्थ अर्थात तर्क का मास्टर की उपाधि दी गई थी। ये वैदिक विद्वान, संस्कृतवादी और जाने माने विचारक थे। 1955 में इन्हें इनकी कृति वैदिक संस्कृति च विकास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
1: Okay, and the next personality in our list is Jamie Oliver. Today is his birthday. He's an English celebrity chef, restaurant and cookbook author. He's known for his casual approach to cuisine and he has fronted many TV shows and opened numerous restaurants. So, Sir Ferozi, let me ask you, are you a foodie?
0: Bilkul.
1: So, do you like to explore different restaurants?
0: मैं अक्सर जाती रहती हूँ। मुझे अलग अलग तरह के पास्ता ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है।
1: ओह अमेजिंग। सो जेमी ऑलिवर इज फेमस फॉर इट्स पिज्जा, डू ट्राई इट आउट। एंड जेमी ऑलिवर इज अ बिग नेम। ही हैज रीच्ड द पब्लिक आई व्हेन हिज बीबीसी 2 सीरीज द नेकेड शेफ प्रीमियर्ड इन 1999। इन 2005 ही स्टार्टेड अ कैंपेन फीड मी बेटर टू इंट्रोड्यूस स्कूल चिल्ड्रन टू हेल्थियर फूड्स, व्हिच वाज लेटर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। ही इज अ बेस्ट सेलिंग British non-fiction author. As of February 2019, he had sold more than 14.55 million books. And in June 2003, he was made a member of the Order of the British Empire for services to the hospitality industry.
0: आज प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ओट्टपलाकल नीलकंठन वेलुकुरुप की भी जयंती है। इन्हें वर्ष 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुरुप को साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मुख्य रचनाओं में मरुभूमि, अक्षरम, मृग्या, उज्जयिनी, स्वयंवरम आदि शामिल हैं।
1: And today we are talking about Robert Koch. Today is his death anniversary, a German physician and microbiologist. He won the 1905 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his investigations and discoveries in relation to tuberculosis. And the day he announced the discovery of the tuberculosis bacterium, 24th of March 1882, has been observed by the World Health Organization as World Tuberculosis Day every year since 1982. As the discoverer of the specific causative agents of deadly infectious diseases, including TB, cholera and anthrax, he is regarded as one of the main founders of modern bacteriology. As such, he is popularly nicknamed the father of microbiology, along with Louis Pasteur, and as the father of medical bacteriology. And for his life's work, he is seen as one of the founders of modern medicine as well.
0: आज मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि, समीक्षक और शिक्षाविद भालचंद्र निमाड़े का भी जन्मदिन है। भालचंद्र निमाड़े के हिंदू, झूल, बिढ़ार, कोसला आदि उपन्यास काफी चर्चित रहे। इन्हें 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
1: And moving on to our next personality, we are talking about Sir Christopher Lee. Today is his birth anniversary. An English actor and singer in a career spanning over 60 years, he became known as an actor with tremendous screen presence and a deep and commanding voice who often portrayed villains in horror and franchisey films. He was knighted for services to drama and charity in June 2009 by Charles, the Prince of Wales, and received the BAFTA Fellowship in 2011 and received the BFI Fellowship in 2013. So let's hear him talking about how passionate he was about playing his characters.
2: I've always tried to play every character, even no matter how villainous. I've always tried to play every character, in a sense, not exactly for sympathy, but to show what I've always termed the loneliness of evil in a character. No matter how villainous or horrible or evil or frightening they may be, there's always a certain aspect which is pitiful, which is beyond their control. I tried to show this in Frankenstein's Monster. I tried to show it in Dracula. I tried to show it in The Mummy.
1: I'm sure you must have seen him in multiple movies, be it in Hammer horror films, in James Bond film The Man with the Golden Gun, and the Star Wars film, the Lord of the Rings film trilogy, and even the Charlie and Chocolate Factory, and Alice in Wonderland, and many, many more.
0: आज भारत के प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर और उम्दा कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्मदिन है। इन्होंने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट कैरियर में धीमी गति के गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई है, इस कारण इन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था। ये 2017 से 2021 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे। इनकी करियर की दूसरी पारी शुरू हुई कमेंटेटर के तौर पर, जब 1990 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंट्री करियर इन्होंने शुरू किया और अपनी दमदार उत्साही आवाज और शानदार अंग्रेजी पर पकड़ के साथ ये जल्द ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय और मांग वाले क्रिकेट कमेंटेटरों में से एक बन गए। आज आशा सचदेव का भी जन्मदिन है। ये 1970 और 1980 के दशक की प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं। इनका असली नाम था नफीसा सुल्तान। आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की 1972 में आई फिल्म डबल क्रॉस से। इन्होंने हिफाजत फिल्म में अभिनय किया 1973 में, जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और इनके अभिनय को और गीतों को काफी सराहा भी गया।

0: And today is the birthday of K.B. Vijendra Prasad, an Indian screenwriter and film director who is known for predominantly works in Telugu cinema. With a career spanning across nearly three decades, his filmography consists of over 25 films as a screenwriter. He is considered to be one of the most successful screenwriters of Indian cinema, and he has frequently collaborated with his son, director S.S. Rajamouli, to deliver some of the highest grossing Indian films of all time. Let's hear a song from one of the films he has worked as a screenwriter.
1: I've had enough of this nonsense! You two, out!
2: No, Jake, I've had enough of your bullying.
0: I'm sure you must have guessed this is from RRR, and he has also written the screenwriting of a Hindi movie, Bajrangi Bhaijaan. Let's hear the song from that.
3: श्रोताओं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का. सरफिरोजी और तन्वी खुराना को दीजिए इजाजत. कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की.
0: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे.
3: नमस्कार.
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
6: हर घर सूर्य घर.
7: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा. सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया.

0: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले दो से तीन दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The center has constituted a high-level committee to address

0: और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निजाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुई, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज्यादातर पुरअमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम चौरासी के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नीतिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफे पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलाक़वामी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: वक्त हुआ है 8:45 और 55 सेकेंड। तो आइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक नए दिन एक नई सुबह का स्वागत करें आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं इस वक्त म्यूजिकल दिल लगी और आज साथ हूँ मैं आपके बबीता। नमस्कार।
1: आते जाते हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: वक्त तो चला है 8:55 और 12 सेकंड। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और आइए अब सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के तौर पर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन

0: दिन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता होगी 1200 किलोवाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे और राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Supreme Court will today pronounce its judgment on the batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India CJI Suryakant and Justice Joy Malia Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenge the legality of the SIR our exercise

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ।

और एंजॉय करेंगे फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग। अरे रे रे रुकिए, पहले आज का सवाल तो सुनते जाइए। आज आप बताएंगे वो तारीख और वो साल भी जब हुआ था प्रसार भारती का गठन।

देखिए, नाचना माने डांस करना वैसे तो हर मायने में बढ़िया ही है, और बदलते दौर के इस बदलते लाइफस्टाइल में तो डांस बतौर एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप जुम्बा कीजिए, क्लासिकल फॉर्म सीखिए, या फिर करिए बस यूं ही जैसे जी चाहे। और अगर फैमिली फंक्शन आने वाला है कोई, तो उसके लिए खास तैयारी विद बढ़िया कोरियोग्राफी तो बनती ही है। लेकिन इस सब में ये मत भूल जाइएगा कि भाई नौतपा भाई साहब

अब भी हैं आपके आसपास। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, डांस, एक्सरसाइज या किसी भी तरह का वर्कआउट अगर आप करते हैं तो इन दिनों यानी नौतपा के दौरान रखना है थोड़ा सा ध्यान। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच किसी भी तरह के वर्कआउट को ना करने की सलाह दी गई है। इसके लिए सुबह हो सके तो सूरज निकलने से पहले का टाइम ही आप सेट करिएगा, या फिर देर शाम जब टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है तब आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। आउटडोर की जगह इंडोर यानी घर के अंदर ही अपना वर्कआउट डिजाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा अभी कुछ दिनों के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी आपको हरगिज नहीं होने देनी है, और मेरे गलत प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करने से आधे घंटे पहले, बीच बीच में और फिर बाद में भी भरपूर पानी पीना है। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी या फिर ORS, सबकी अहमियत समझनी है और अपने इंटेक में शामिल करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज के दौरान कपड़ों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करें आप। हल्के, ढीले और सूती कपड़ों को ही प्रेफरेंस देना है। और अगर आप जूझ रहे हैं दिल की बीमारी, हाई BP या फिर डायबिटीज से, तो अभी नौतपा की इस तपा देने वाली गर्मी में थोड़ा डाइट से ही मैनेज करने की कोशिश करिएगा। हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी शेड्यूल ना करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा आपके लिए ज्यादा है। एक्सरसाइज के दौरान अगर चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है तो तुरंत रुक जाइए, किसी ठंडी जगह पर जाकर रेस्ट करिए और साथ में एंजॉय कीजिए FM गोल्ड पर म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर इस अगले डांस नंबर के साथ।

और अब चलिए हम भी कर लेते हैं वो काम जो हम हर रोज करते हैं, फिर से कर लेते हैं। आज के दिन यानी 27 मई के बारे में बातें कर लेते हैं, थोड़ा नजदीक से जान लेते हैं आज के दिन को। तो जनाब, रूस यानी रशिया के इतिहास में आज का दिन बड़ा ही खास है, और वजह उसकी ये है कि आज ही के दिन साल 1703 में वहां पर हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना। ये शहर खास इसलिए भी है क्योंकि साल 1917 की रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर इस शहर को जाना जाता है। इसके अलावा साल 1895 में ब्रिटिश आविष्कारक बर्ट एक्रेस ने फिल्म कैमरा या प्रोजेक्टर आप कह सकते हैं, आज ही के दिन उसे पेटेंट करवाया था। और इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद में आज ही के दिन मंजूरी मिली थी बेहद महत्वपूर्ण कॉपीराइट विधेयक को, और वो साल था 1957। और अगले ही साल 1958 के पहले महीने यानी जनवरी से ही ये विधेयक लागू भी हो गया था। गपशप आपकी और मेरी यूं ही रहेगी जारी, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं आज का सवाल। प्रसार भारती, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था के रूप में जिसे आप जानते हैं, और जिसके अंतर्गत ही आकाशवाणी और दूरदर्शन आते हैं, उसका गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। कहां और कैसे ये आप जानते हैं, और क्या आप मानते हैं ये बात जो इस गाने में कही जा रही है, वो भी इतनी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चंद्र हरता है निशा की लालिमा, हृदय को देता उसे है लालिमा, किंतु होकर लोक निंदा से अशंक, निशा देती है उसे अपना कलंक। यहाँ चंद्र यानी चांद है उपकारी, यानी वो जो किसी का बेहतर करने की, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, पर बदले में उसे क्या मिलता है? निशा यानी रात अपने हिस्से का सारा कलंक, सारे दाग उसी चांद के सिर मर देती है। और हमारे समाज में भी तो कभी कभी कुछ ऐसा ही होता है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध निबंधकार और कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने ये बात कही थी। और आज यानी 27 मई को ही साल 1894 में छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में उनका जन्म हुआ था। और इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, मशहूर कमेंटेटर और अपने जमाने के हरफन मौला खिलाड़ी रहे रवि शास्त्री जी का भी जन्म आज ही के दिन साल 1962 में हुआ था। मुंबई में जन्मे रवि शास्त्री के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं और एक ऑलराउंडर के रूप में वो जाने जाते हैं। रणजी मैच में एक ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा करने वाले वो दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज थे। इसके अलावा महज 113 मिनट की पारी में, मतलब कि 2 घंटों से भी कम समय में डबल सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड उनके नाम है। बतौर खिलाड़ी ही नहीं बल्कि बतौर टीम इंडिया के कोच भी रवि शास्त्री ने अपना काम बखूबी निभाया है। उन्हीं की कोचिंग में टीम इंडिया लंबे समय तक आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनी रही और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंची। और देखिए, आप भी पहुंच चुके हैं मेरे साथ म्यूजिकल दिल लगी के आज के सफर में काफी आगे। तो चलिए सुन लेते हैं एक और बढ़िया सा गाना, और भूलिएगा मत आज के सवाल का जवाब भी बताना। अच्छा प्रकाश गोगिया जी, एक बात सुनिए, आज के सवाल का जवाब लिखा बहुत अच्छी बात है, फोन नंबर भी लिखा ये और भी अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से लिखा ये नहीं लिखा। तो भेजिए अपने शहर का नाम, आपके नाम के साथ साथ शहर का नाम भी बोला जाए तो कितना अच्छा लगेगा। नहीं

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

AIR at 90. मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

म्यूजिकल दिल्ली सुन रहे हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, और हम बात कर रहे थे आज की तारीख यानी 27 मई के बारे में, जिसे इतिहास में इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। 27 मई 1964 की दोपहर थी वो, जब रेडियो पर करीब 2 बजे पूरे देश को ये दुखद समाचार मिला। बतौर भारत के प्रधानमंत्री 16 साल 9 महीने और 12 दिन का उनका कार्यकाल कई मायनों में यादगार रहा, और फिर 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक को झेलते हुए उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। और आज ही स्मृति दिवस है तेलुगु साहित्य के आधुनिक काल के साहित्यकार एवं समाज सुधारक रहे कंदुकूरी वीरेशलिंगम पंतुलु जी का भी। सनातन पंथी ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंतुलु जी जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे और स्त्री शिक्षा के घोर समर्थक भी। तेलुगु साहित्य के पहले उपन्यासकार और पहले पत्रकार होने के साथ साथ गद्य ब्रह्मा के नाम से भी ये मशहूर हुए। और आज ही के दिन यानी 27 मई साल 1919 में उन्होंने अंतिम सांस ली। बातों का दौर म्यूजिकल दिल लगी में आगे भी रहेगा जारी, लेकिन साहिब उससे पहले आ गई है इस अगले ट्रैक की बारी।

इंडिया मिशन का, और जो की पहल है भारत सरकार की इस उद्देश्य के साथ कि देश के युवाओं को इस काबिल बनाया जा सके कि देश की तरक्की के वो हिस्सेदार बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत करोड़ों भारतीय युवाओं को आज के दौर की मांग के हिसाब से तकनीकी और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई योजनाएं इस मिशन के तहत आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल योजना, जिसमें युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है और कोर्स पूरा हो जाने पर उन्हें आर्थिक पुरस्कार और संबंधित सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलाने और स्टाइपेंड दिलाने की सुविधा शामिल है। और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम का भी यहां पर जिक्र करना जरूरी है, जिसके तहत देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआईज के जरिए युवाओं को टेक्निकल ट्रेनिंग देकर जिंदगी के कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। और एक बड़ी ही अच्छी बात इस अगले गाने में भी कही जा रही है, आपसे या मुझसे नहीं बल्कि जिंदगी से।

0: खत्म ही होने वाला है म्यूजिकल दिल्लगी का आज का ये सफर हमारा। तो भाई सुन ही लीजिए अब वो सभी नाम जिन्होंने दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। नवीन भाटिया मोतीनगर दिल्ली से आया सबसे पहले जवाब। भाई 9:12 पर आ चुका था जवाब, मतलब मेरे सवाल पूछने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सर ने जवाब भेज दिया था और उसके तुरंत बाद यानी 9:13 पर ही आ गया था आशीष गायकर जी का सही जवाब मुंबई से। इसके बाद तो भाई झड़ी ही लग गई। कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, भाभानी शंकर चेन्नई से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, देवदत्त परसौलिया दिल्ली से, अनु परजात्या मुंबई से, एसके खन्ना गुरुग्राम से, महावीर खत्री गुरुग्राम से ही, अशोक कुमार शर्मा अलवर राजस्थान से, शिव खन्ना विकासपुरी से, रामकृष्ण घोटीकर नवी मुंबई से, संतोष सक्सेना मुंबई से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर से, सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव दिल्ली से, जी हाँ इसी तरह से पूरे नाम के साथ, जगह के नाम के साथ और फोन नंबर के साथ भेजना है अपना जवाब, ठीक है। मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, रमन डोगरा दमताल हिमाचल प्रदेश से, प्रवीण रावत पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, राजा नई दिल्ली से, सुदर्शन मुखी दिल्ली से, सुनील तुप्तेवार नांदेड़ महाराष्ट्र से। देखिए कितने सारे सही जवाब आए। और जैसा कि आज मैंने आपसे पूछा था कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था ये आपको बताना था, और क्या है इस सवाल का सही जवाब ये मैं नहीं बताऊंगी आपको बल्कि बताएंगी किरण जी जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ग्रीन रेसिडेंसी गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ
0: जी। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे आज के सवाल का जवाब और फिर करेंगे बातें। जी हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी किरण जी बताइए कब हुआ था प्रसार भारती का गठन?
1: मैम प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है और इसीलिए तो आपको फोन कॉल भी गया है। चलिए अब बताइए कब से सुन रही हैं आकाशवाणी, कैसा लगता है और किस तरह के शोज पसंद करती हैं आप आकाशवाणी पर?
1: आकाशवाणी को सुनते सुनते मुझे काफी टाइम हुआ है
0: जी,
1: मैक्सिमम कम से कम 20 साल तो हो गए।
0: अरे वाह क्या बात है जी। किस तरह के शोज पसंद करती हैं, क्या कुछ अच्छा लगता है जो 20 साल से?
1: मुझे हर तरह के सॉन्ग, मुझे ज्यादा ओल्ड सॉन्ग पसंद है।
0: ओके तो फिर तो एफएम गोल्ड आपके लिए बिल्कुल मुफीद है।
1: जी हाँ
0: जी। और बताइए दिन कैसे शुरू होता है, क्या करती हैं, घर में कौन कौन है बताइए अपने बारे में।
1: मेरा सुबह का रूटीन है, सुबह मॉर्निंग उठ के बस उठना और फिर मॉर्निंग वॉक जाना और बच्चों को देखना, उसके बाद मेरा रेगुलर ये है, मैं सॉन्ग जरूर सुनती हूँ अपने साथ।
0: अच्छा सॉन्ग जरूर सुनती हैं, तो कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग भी आपका जरूर होगा।
1: हाँ
0: तो बताइए हम आपके लिए प्ले करेंगे।
1: हाँ मैं खानदान मूवी से
0: जी
1: सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तुम ही मेरे मंदिर हो तुम ही देवता हो।
0: अरे वाह बहुत ही प्यारा गाना है, तो हम सुनेंगे इसे जरूर, लेकिन पहले आपसे सुनेंगे जरूर। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे लिए।
1: ओके
0: जी।

0: हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने गाया। अच्छा ये बताइए, शादी हो गई आपकी?
0: यस
1: तो हस्बैंड जी को सुनाया कभी ये गाना?
0: हाँ, उनका फेवरेट गाना है ये, मैं
1: अरे
0: उन्हीं के लिए
1: वाह,
0: सुनना चाहती हूँ।
1: तभी तो चलिए आपको और आपके हस्बैंड जी को भी कर देते हैं खुश, और बहुत जल्द सुनाते हैं यही गाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। तो ये थी किरण कुमारी जी गाजियाबाद से, और प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज इनकी और प्यारे प्यारे गाने की इन्होंने फरमाइश की है, जिसे हम और आप सब मिलकर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि जाना कहीं नहीं है आपने। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार देश और दुनिया से जुड़े हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके बाद ठीक 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा आपके लिए और मैं करूंगी आपका इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: president will interact with the soldiers stationed at Nathula, where senior army officers will brief her on various activities in the area. She will also visit the Baba Harbhajan Singh Shrine. Later in the day, President Murmu will award degrees and medals to the students during convocation ceremony of Sikkim University at Manan Kendra in Gangtok. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company Jeff Shockey in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling supply chains, innovation, and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. Prime Minister Narendra Modi and Lok Sabha Speaker Om Birla has paid tributes to the former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on his death anniversary. The Indian Air Force has announced a new scheme for recruitment to its technical branch in the officers' cadre through GATE scores. The Ministry of Defence said candidates with a valid graduate aptitude test in engineering or GATE score will be directly shortlisted for testing at the Air Force selection boards. Under the scheme, eligible candidates will not have to appear for the preliminary written examination, including the Air Force Common Admission Test or AFCET. Selection will be based on merit. The Ministry of Railways has approved the launch of the country's first hydrogen-powered 10-coach DEMU train. The move marks a significant step towards promoting green and sustainable transportation in the railway sector. The train will run between Jind and Sonipat at a maximum speed of 75 km per hour using hydrogen fuel cells to generate power. Russian embassy in South Africa has said scientists in Russia have developed a new vaccine against the latest strain of Ebola virus. Russian Health Minister Mikhail Murashko announced the development. Scientists said the vaccine may also work against the rare Bundibugyo strain linked to recent outbreaks in the Democratic Republic of the Congo. In IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs, Gujarat Titans were all out for 162 with three balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है और ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी।

कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि सीईपीए व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

0: और संतुलित समझौता किया है।
1: अ वेरी गुड फेयर इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड एग्रीमेंट।
2: इसराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने यह आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओदेह हाल ही में अजेद्दीन अलहदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अलहदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को खाना बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
4: श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
2: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनान और

0: इसराइल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमरीका में होने वाली बैठक से तीन दिन पहले हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसराइल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंडमास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का मुकाबला होगा जापान की रिको गुंजी से। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 7वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा है कि गजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning, this is Akashwani. I am VC Pramod with the World News. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar co-chairs 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi. Israeli military says it killed Mohammed Odeh, new head of Hamas's military wing in Gaza and key planner of October 7, 2023 attacks. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build a lunar base. And Grandmaster Inian Panirselvam clinches double gold after winning both rapid and blitz titles at Commonwealth Chess Championship in Sri Lanka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi last evening. Dr. Jayashankar said that they exchanged views on the Indo-Pacific, the situation in West Asia and other regional, global and multilateral issues. They also reviewed the steady progress of the comprehensive strategic partnership between the two nations. Dr. Jayashankar added that cooperation is expanding in energy sector, including uranium supplies to generate nuclear energy.
2: On the energy side, we are looking to expand that as well into uranium supplies. Our own nuclear sector has undergone reform, which would grow nuclear energy. Our teams have been in discussion on critical minerals as well. Our defense exchange and exercises, again, have been taking place. Our maritime cooperation has been the centerpiece of that. We've had some talks on space cooperation.
1: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has expressed confidence that the next chapter of the India-Canada Economic Partnership will be driven by trust, leading to the shared prosperity of the two nations. Addressing the opening ministerial plenary session from political reset to commercial delivery in Toronto, Canada last night, Mr. Goyal emphasized that trust between the nations is unlocking new trade and

नमस्कार, आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं एक बार फिर आपसे ढेर सारी बातें करने और बॉलीवुड गानों से जुड़ी आपकी नॉलेज को टेस्ट करने भी। आपको क्या करना है ये वैसे तो आप जानते ही हैं, लेकिन नए लिसनर्स की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868687853 पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। लिखना है अपना और अपने शहर का नाम, साथ ही कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये भी आप लिखेंगे और लिख भेजेंगे उस गीत के बोल भी, जिससे जुड़ा एक आइडेंटिकल म्यूजिकल पीस मैं अब आपको सुनवाने वाली हूं। तो बाकी बातें बाद में, पहले सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए ये म्यूजिक पीस। एक बार और सुन लीजिए। तो अगर पहचान लिया है ट्रैक तो तुरंत कर डालिए अटैक, जल्दी से लिख भेजिए गाने का मुखड़ा और फिल

फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत जिसकी फरमाइश आई है हमारे पास दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय ढींगिया संदीप मक्कड़ अनिल जैन दर्शन भाई की ओर से मेरठ कैंट से आई है ये फरमाइश।

जीवन की सुगंध का आनंद वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महक जाने की काबिलियत रखता है। जिंदगी दो दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, जिस दिन खिलाफ हो थोड़ा सा सब्र जरूर कर लेना। कितनी अच्छी बात लिखकर भेजी है अनु बड़जात्या जी ने मुंबई से सीधा।

खान और अनुराज बेनारा भी इनके साथ इस मैसेज में शामिल हैं। और एक बात भी लिखी है इन्होंने, लिखती हैं कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। क्या बात है, बड़ी गहरी बात लिखी। और बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी इस बहुत ही अच्छे मैसेज के लिए। और इसी के साथ अब मेरी नजरें ढूंढ रही हैं अगला मैसेज जिसमें भी लिखी हो कुछ ऐसी ही बात। मिल गया है। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ दवा से जाता है, लगा दे मरहम कोई अपनेपन का तो भी सुकून आ जाता है। और इसी के साथ लिखी है अपनी फरमाइश मनोहर लाल गांधी जी ने विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और सवाल का जवाब जो धुन मैंने अभी आपको सुनाई उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि फिल्म कुर्बानी का ये म्यूजिक लग रहा है। है नहीं, गलत जवाब है। थोड़ा सा और सोचिए, अभी फिर से सुनवाती हूँ आपको ये म्यूजिक पीस और उम्मीद है मुझे कि आप जल्द ही पहचान जाएंगे। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है। क्या बता सकते हैं भाई? बोधराज खोरवाल जी कह रहे हैं कि भरोसा है वो पासवर्ड। और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही बात है। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। और इसी के साथ चलते हैं एक और मैसेज की तरफ। सतीश अनेजा जी ने भेज दिया है हर रोज की तरह अपना खूबसूरत सा शेर लिखकर। लिखते हैं, पुरखलूस सलाम नाज बहना जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं, बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं देते हैं। लिखा है आगे कि हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, हर एक सजदा मकबूल खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। मिले आज तुम्हें वो खुशियां प्यारी बहना नाज, हजारों सालों तक गम तुझसे खफा हो जाए। और इसी के साथ अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। चंडीगढ़ से ये मैसेज आया है। सतीश अनेजा जी के साथ बिमला अनेजा भी शामिल हैं इस मैसेज में। तो चलिए मैं नोट करूं वो सभी नाम जो लगातार भेज रहे हैं आज के सवाल का सही जवाब। चलिए एक बार म्यूजिक पीस और सुना देती हूँ, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश। बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया है और जवाब लगातार आ भी रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी फरमाइश हमारे पास आई है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार की ओर से खरगोन सनावद एमपी बोडाना से ये फरमाइश आई है। इसके अलावा सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी इस फरमाइश में शामिल हैं भाई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ, बिल्कुल यही म्यूजिक पीस है वो, जिसे आप सुन रहे हैं बार बार और पहचान भी रहे हैं, सही बोल भी लिखकर भेज रहे हैं और साथ में भेज रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं, मुसीबत तो एहसास वालों की है। सुप्रभात। ये खूबसूरत मैसेज आया है विजय नारंग जी की ओर से, नन्हे पहलवान बाजार सीताराम से, दिल्ली से, और साथ ही भेजा है आज के सवाल का जवाब भी। एक और मैसेज आया है, हर मुसीबत के देखिए दो समाधान होते हैं, भाग लो या भाग जाओ। भाग लो या भाग जाओ, चॉइस आपकी है, जो भी आपको पसंद हो। सत प्रकाश सनोठिया जी ने ये राय दी है, रोहिणी दिल्ली से, और बहुत ही सारे मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं लगातार, जिन्हें देखकर खुशी तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर मैसेज शामिल नहीं हो पाए सारे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी है, तो आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसा नाम है नाज तुम्हारा, वैसे नाज नहीं है तुम्हारे, इसी बात ने जीता मन हम सबका, घोला शहद श्रोता के मनों पर अपनी मधुर वाणी का। एस के खन्ना साहब ये लिख रहे हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लिखा है कि हम तो आज उत्तर नहीं देंगे क्योंकि आप शामिल ही नहीं करते। अब देखिए, आपने आज ही उत्तर नहीं देने का फैसला किया और मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है आपका नाम तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ जनाब, कहीं कोई ट्रिक तो नहीं। बोधराज कोरवाल साहब का ये मैसेज उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी के साथ, भेज दीजिए। चलिए माफी मांग लेती हूँ, अब तो मैसेज शामिल कर लिया, जल्दी से भेज दीजिए जवाब। चलिए अगला मैसेज शामिल करेंगे हम। एक और नाराजगी आई है भाई कि आपने आज तक मैसेज शामिल नहीं किया हमारा, तोहमत है ये तो। नवाब अहमद भारती साहब का ये मैसेज है, तो माफी के साथ मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। और साथ ही ये भी लिख दिया है कि भाई हमारी समझ में तो नहीं आया कि ये म्यूजिक ट्रैक किस गीत का हिस्सा है, किस गीत की शुरुआती धुन है। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन उम्मीद है अब आप नाराज नहीं होंगे। और सोचता हूं आज पर्दा हटा दूं इस राज से, सोचता हूं आज पर्दा हटा दूं इस राज से, दिल का मेल बॉक्स में रौनक है मैडम ना से। क्या बात है सर, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बाकी सभी आरजीज भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं मेरी तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज आया है गगन दीप थांदी जी की ओर से, लिखते हैं बहुत देर से दर पर आंखें लगी थीं हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। देर हो गई उसके लिए माफी, लेकिन अभी तो मैसेज शामिल हो गया है। चलिए जल्दी से एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश, लेकिन माफ कीजिए घड़ी तो बहुत तेजी से भाग रही है। अगला मैसेज शामिल करेंगे और उसके बाद जानेंगे आज के सवाल का सही जवाब और नाम भी। तो नाज जी आदाब नमस्कार, ये आवाज नहीं कोई सुहाना सा ख्वाब है, खुदा की फुर्सत का सबसे हंसी जवाब है, बनाए रखना इस आवाज को नाज जी हमेशा, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में यही नायाब है। आपकी आवाज का जादू कुछ ऐसा असर करता है कि खामोश सा दिल भी धीमे से धड़कता है, लहजे में जो छुपा है एक मासूम सा नाज, उसी सादगी पर दिल बार बार मरता है, जब बोलती हो आप तो समा ठहर जाता है, हवाओं का रुख भी जैसे बदल जाता है, मिश्री सी घुल जाती है फिजाओं में, हर तरफ हर कड़वा लम्हा पल भर में सुधर जाता है। सच में सर कहीं रो ही ना दूं मैं, इतना खूबसूरत

मैसेज, इतनी तारीफ, उफ। पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब की ओर से ये मैसेज आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी की ओर से, और इनके साथ ही दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी, जो खुद को रेडियो दीवाना कहते हैं, शामिल है इस मैसेज में, इस खूबसूरत से मैसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए अब इस घड़ी को तो मैं नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, तो मैं ही बढ़ जाती हूँ आगे और बता देती हूँ आपको आज के सवाल का जवाब। तो दोस्तों, ये म्यूजिक पीस जो आपने बार बार सुना आज, वो हिस्सा है एक बेहद खूबसूरत गीत का, भोर भये पनघट पे। लता मंगेशकर जी की सुरीली और सूदिंग आवाज इस गाने के साथ आप सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का सुपर हिट म्यूजिक भी है इसमें। राग भैरवी पर बेस्ड इस गाने के बोल निकले हैं आनंद बख्शी साहब की कलम से। सुबह के समय जब आप इस गाने को सुनते हैं ना, तो बस इसी में खो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा। और आप महसूस करते हैं कि कोई अल्हड़, कोई बहुत कम उम्र की आवाज इसे गा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब लता जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तब उनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। बस यही तो जादू था लता जी का कि जीनत अमान जी, जो उस समय सिर्फ 26 साल की थी, उन पर वो आवाज बिल्कुल सटीक बैठी। प्यारे लाल साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत जी के साथ उन्होंने एक खास रिदम पैटर्न तैयार किया था, जिसमें एक अनोखा वेस्टर्न और क्लासिकल फ्यूजन आप सुनते हैं। मटके के पानी की खनक के साथ घुंघरुओं की थाप को बड़े कमाल ढंग से उन्होंने मिक्स किया और पेश किया हमें ये बेहतरीन गाना, जिसे आप सभी ने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये रहे वो सभी नाम, सभी तो नहीं कहूंगी वरना आप फिर नाराज हो जाएंगे। सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, मेहर अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से, मधुबाला तिलंग कोटला दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंद शहर से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, सुमेरा परवीन बुलंद शहर से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, विजय नारंग दिल्ली से, सुनील पाठक अनार कली बाजार जगराओ से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। और दोस्तों, मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए हैं। चलिए, कुछ वक्त है हमारे पास, तो जल्दी से उन नामों को भी शामिल करने की कोशिश जरूर कर लेते हैं। तो दिग्दर्शन साहब का भी मैसेज आ गया है सही जवाब के साथ, और फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा के साथ भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा, लेकिन माफ कीजिएगा, आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाएगी वक्त की कमी के चलते। और अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी जी का, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और कौन कौन कर रहा है मैसेज, चारू जटोलिया जी का अभी अभी मैसेज आया है कि देखिए, आप हमारा ईमेल पढ़ते तो हो नहीं, पर फिर भी हमें आपका एपिसोड बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है दिल्ली नागलोई से। और इसके साथ ही एक और मैसेज, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और ऐसी गर्मी से बचें और हल्के कपड़े पहनें और ठंडा पानी पिएं। जैन मंदिर कुरावली से ये मैसेज राशिद हुसैन अंसारी साहब का। चलिए दोस्तों, आज के लिए दिल का मेलबॉक्स में यहीं तक था आपका और मेरा सफर, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये गाना सुनेंगे, फिर समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, और ठीक 11:10 पर तस्वीर में फिर मिलेंगे, ठीक है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वह सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

0: सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Center has said that no case of Ebola virus disease has been reported in the country so far. Union Health Ministry said it is closely monitoring the evolving Ebola situation following recent outbreaks reported in parts of Africa. Sources said an individual with recent travel history from Uganda who reported mild symptoms of body ache was isolated at the state-run Epidemic Diseases Hospital in Bengaluru for observation and medical evaluation. A sample was collected and sent to the National Institute of Virology for laboratory testing. The test result has returned negative for Ebola virus disease. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in the NEET UG 2026 examination paper leak. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 question leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical

0: निदा फाजली साहब ने फरमाया है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। और हवाओं का रुख आज जरा ईस्ट की ओर है, क्योंकि तस्वीर में आज हम उधर ही चल रहे हैं। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। तो एक हिंट तो आपको मिल ही गया है कि आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत की ओर। जगह कौन सी है इसके बारे में एक हिंट और मैं आपको देती हूं कि वहां सुनाई देती है आपको टाइगर की दहाड़, और घने जंगल सुनाते हैं अपनी कहानियां। तो बूझिए और लिख भेजिए जगह का नाम तस्वीर की प्लेलिस्ट में शामिल इस पहले गाने के खत्म होने से पहले।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा

भाई दो मैसेज आए हमारे पास जिन्होंने नाम को गेस करने की कोशिश की कि आज कहां की तस्वीर आप देखने और सुनने वाले हैं। अनु बरजाते जी और कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने किया मैसेज, लेकिन अफसोस के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि आप दोनों का ही जवाब गलत है। तो दादा अगर अखन तक नहीं बुझ ले तो सुन ले, गलत प्रोनंस हुआ क्या, उसके लिए माफी। तस्वीर में आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत के झारखंड राज्य और यहीं के बेतला नेशनल पार्क। जी हाँ, नेशनल पार्क ही है ये, आपने सही गेस किया, लेकिन नेशनल पार्क का नाम थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए फिर पहुंचे हम बेतला, उससे पहले कर लें कुछ तैयारियां। अरे भाई, ट्रेन से जाना है, बाय प्लेन जाना है या फिर बाय रोड जाना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट अगर मेरी लेंगे एडवाइस तो सेट कीजिए अपना बजट और पहले ही बुक कर लीजिए रांची एयरपोर्ट का टिकट, जो बेतला से लगभग 170 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। सीधी फ्लाइट आपको यहां के लिए देश के हर बड़े शहर से मिल जाएगी और फिर टैक्सी या बस तो अवेलेबल है ही। दूसरा ऑप्शन आपके पास गया एयरपोर्ट का भी है, जिसकी दूरी बेतला से है करीब 190 किलोमीटर के आसपास।

तो बेतला नेशनल पार्क के लिए निकलना है और ट्रेन से जाना है, तो क्यों टाइम गवाना है? सीधा ऑनलाइन जाके टिकट बुक करना है बरवा डीह जंक्शन का, जहां से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के सफर के बाद आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। एक और ऑप्शन यहां पर भी है आपके लिए, और वो है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, जिसकी दूरी बेतला नेशनल पार्क से आपको पड़ेगी कुछ 25 किलोमीटर के आसपास। और बाहर निकलते ही रेगुलर तौर पर मिलती रहेंगी लोकल बसें, ऑटो या फिर प्राइवेट कैब भी। बाय रोड जहां तक जाने का मसला है, तो पहले पहुंचना होगा रांची और फिर पकड़ना होगा NH 75। लातेहार होते हुए आराम से आप बेतला पहुंच जाएंगे, और कार से इस सफर में आपको लगेगा सिर्फ 4 घंटों का समय। पटना से जाएंगे तो औरंगाबाद होते हुए NH 98 पकड़ेंगे, जहां से डिस्टेंस आपको पड़ेगा बेतला नेशनल पार्क तक का करीब 260 किलोमीटर। और जनाब, जब बैग पैक कर ही लिए हैं, मूड बन ही गया है, तो सुनिए एक और गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ बेतला नेशनल पार्क की सैर पर, जो कि झारखंड राज्य के लातेहार और पलामू जिलों में मौजूद राज्य का इकलौता यानी एकमात्र नेशनल पार्क है। मशहूर पलामू टाइगर रिजर्व का ये एक मुख्य हिस्सा है और भारत वन्य जीव संरक्षण और सफारी के नजरिए से बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। लगभग 1129.93 वर्ग किलोमीटर इसका दायरा है, जिसमें से टूरिस्ट बफर जोन है सिर्फ 53 वर्ग किलोमीटर। हरे भरे जंगल, पहाड़ियां, घाटियां और झरने आपको यहां पर मिलेंगे और साथ ही एक शांत आदिवासी गांव की सैर का मौका भी आप पा लेंगे। जानकारी आपको यहां पर ये जरूर होनी चाहिए कि बेतला नेशनल पार्क आपके लिए 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है, क्योंकि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मॉनसून के चलते इसे पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। बेस्ट टाइम अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको कहूंगी अक्टूबर से अप्रैल के बीच, क्योंकि इस दौरान मौसम यहां का बहुत सुहाना होता है। लेकिन जनाब, ये जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं, इसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। बस थोड़ी सी जगह आपके आसपास होनी चाहिए ताकि आप उठें और उठकर थोड़ा बहुत मटक सकें।

चलिए डांस हो गया तो अब गौर फरमाइएगा। बेतला नेशनल पार्क भारत के उन पहले राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है जिन्हें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। फिर साल 1986 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल गया। यहाँ के जंगलों में आपको दिखाई पड़ती है वनस्पतियों की एक विशाल श्रृंखला जिसमें साल और बांस मेन है। साथ ही कई मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उत्तरी कोयल नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां भी इस पार्क के उत्तरी भाग से होकर गुजरती हैं और जिससे बनते हैं घास के मैदान जिन पर नंगे पांव चलते हुए आपके शरीर को मिलती है ठंडक और मन को मिलता है सुकून। पार्क के अंदर घूमने के लिए गाइड के साथ जीप सफारी आपके लिए मौजूद है और वन्य जीवों को देखने के लिए जगह जगह वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ के किन किन वन्य जीवों के होंगे आपको दर्शन जानेंगे, लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और थोड़ी सांस लेते हुए पियेंगे ठंडा पानी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, जहां आप मेरे यानी नाज के साथ निकले हैं बेतला नेशनल पार्क की सैर पर। अच्छा बेतला, ये नाम भी बड़ा खास है, कैसे? चलिए बताती हूँ। ध्यान देंगे इस नाम की इंग्लिश में स्पेलिंग पर, जो कि होती है BETLA, और जिसमें बी फॉर होता है बाइसन यानी कि गौर, ई फॉर एलिफेंट यानी हाथी, टी फॉर होता है टाइगर यानी बाघ, एल से होता है लेपर्ड यानी तेंदुआ, और लास्ट में ए यानी एक्सिस, जिसे चीतल या हिरण के लिए माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेतला नेशनल पार्क में आप सिर्फ इन्हीं कुछ जानवरों को देख पाएंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर स्लॉथ बेयर, जिन्हें सुस्त भालू कहा जाता है, अच्छी खासी तादाद में दिखेंगे। चित्तीदार और सांभर दोनों तरह के हिरण आपको यहाँ घूमते फिरते मिल जाएंगे। इनके अलावा बारहसिंगा और काकड़, जिन्हें भौंकने वाला हिरण भी कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ बेतला नेशनल पार्क में नजर आएंगे। ब्लू बिल यानी नील गाय भी पार्क के खुले मैदानी इलाकों में नजर आती हैं, और इनके साथ ही घने पेड़ों की डाली से झूलते लंगूरों और शरारती बंदरों की तो आपको यहाँ पर भरमार ही मिलेगी। बर्ड वॉचर और इनके लवर हैं आप अगर, तो भी बेतला नेशनल पार्क आपके लिए है। कैसे जानेंगे आफ्टर दिस एक और गाना, मस्ती वाला।

हाँ जी, तो बर्ड वॉचिंग की हो रही थी बात इस गाने से पहले, तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। बात भाई सीधी सी है कि रंग बिरंगे चहकते और गुनगुनाते करीब 170 से भी ज्यादा तरह के पक्षी आपको यहाँ नजर आएंगे। कहाँ? अरे यहीं बेतला नेशनल पार्क में, जहाँ की सैर आप कर रहे हैं मेरे साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप और तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, अब तो याद आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी मेन प्रजातियां हैं यहाँ पक्षियों की, जिनकी पिक्चर्स आप जरूर क्लिक करना चाहेंगे अपने फोन में। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है मोर, जो बहुत बड़ी तादाद में आपको अपनी सफारी के दौरान चहचहाते और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि नाचते हुए भी दिख जाएं। इसके बाद हॉर्नबिल, जो अपनी अजीबोगरीब और बड़ी चोंच के लिए मशहूर है, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिर जंगली मुर्गे, चील, बाज और उल्लू जैसे पक्षियों की कमी तो यहाँ है नहीं। कमलदहा नदी और उत्तर कोयल नदी की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ वाटर बर्ड्स जैसे बगुले, बत्तख और यूरेशियन कूट जैसे प्रवासी पक्षी भी नजर आ जाएंगे। तो है ना एकदम हेवन वाली फीलिंग, यही इसी धरती पर यकीनन यही महसूस करेंगे आप बेतला नेशनल पार्क आकर कि वाकई कुदरत ने क्या गजब कर डाला है

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखिए, पार्क काफी बड़ा है और एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया भी है ये, तो अंदर आपको जगह जगह पर रेस्टोरेंट या कैफे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकारी वन विभाग की कैंटीन या फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप जरूर पेट पूजा कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं आपको कि पार्क के अंदर किसी भी तरह

0: का खाना ले जाने की सख्त सख्त मनाही है, और ऐसा आपकी ही सेफ्टी के लिए है। भाई खाना आपके साथ होगा तो जानवर भी तो साथ आना चाहेंगे आपके, है ना? तो सजेशन मेरा आपको यही है कि पार्क के मेन गेट के बाहर जो कुछ खाना है खा लीजिए, और फिर भी अंदर भूख लग जाए तो सीधा वन विभाग की कैंटीन का रुख कर लीजिए। हाँ, लेकिन पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिए, चाहे आप कहीं पर भी हों। और फिर पार्क के बाद बेतला में जब आप घूमने निकलेंगे तो आपको झारखंड की लोकल कुजीन जरूर टेस्ट करनी चाहिए। धुसका खाइए, जो बेसिकली चावल और चने की दाल का बना एक डीप फ्राइड स्नैक है, और इसके साथ ही आपको मिलेगी मडुआ यानी रागी की रोटी। और नॉनवेज के शौकीन अगर आप हैं तो आपके लिए रहेगी एकदम स्पेशल चिकन और मटन करी। पार्क के अंदर सरकारी कैंटीन में मिलेगा आपको एकदम गर्मा गर्म घर का खाना, थालियों के कई ऑप्शंस रहेंगे, और फास्ट फूड की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ मुझे यानी नाज को आपसे विदा लेनी होगी, क्योंकि तस्वीर की आज की समय सीमा यहीं पर खत्म होगी। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय और नमस्कार।
1: तो हम चलते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का

0: ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50-27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court said that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementaries between India and Canada and

0: चांदन।
1: कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ दे देती है लेकिन हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी खुशी ही दिल को पूरा भर देती है। शायद इसीलिए खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस थोड़े से एहसास की जरूरत होती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं घर आंगन, एक ऐसी जगह जहां बात होती है उन एहसासों की जो शब्दों में नहीं रिश्तों में बसते हैं, जहां हर कहानी किसी न किसी अपने से जुड़ जाती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम आ गए हैं आपके बीच 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं, आपकी अपनी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए कुछ पल अपने लिए चुरा लीजिए और मेरे साथ चलिए अपने ही घर आंगन में।

जी हाँ, आप बेगाने थोड़ी ना हैं, आप तो हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ये जो अपनापन है ये हम जोड़ पाते हैं एक ही माध्यम से, जो है हमारा ईमेल आईडी। जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। और आपने ये जो गाना सुना ये था फिल्म आंसू बन गए फूल से, और इसमें स्वर थे किशोर कुमार के साथ आशा भोसले के। जी हाँ श्रोताओं, समस्या का समाधान एक ही है, क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, है ना। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, और आप भी मानेंगे कि जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटे छोटे अहम और अनकही बातों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम सही तो होते हैं मगर संबंध हार जाते हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का यह विचार हमें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देता है। समस्या का समाधान, जैसे कि हमने आपको बताया कि या तो आप क्षमा कर लें या फिर क्षमा मांग लें। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं स्वयं को भी शांति देती है, क्योंकि मन में जो जमा नाराजगी है ना, वो धीरे धीरे रिश्तों की मिठास को कम कर देती है। कभी एक कदम झुक जाना और एक शब्द माफ कीजिए कह देना या किसी को दिल से क्षमा कर देना कई टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। आखिर रिश्ते जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें सहज कर रखना, है ना।

फिल्म गुड्डी में आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में ये गीत, और इनका साथ दिया था उनके कई साथी कलाकारों ने भी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम आकाशवाणी के स्थापना के 90 वर्ष को यहाँ पर मना रहे हैं, तो आइए बात करते हैं आकाशवाणी की ही। एक समय था जब सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटियों से नहीं बल्कि आकाशवाणी के संकेत धुन से हुआ करती थी। भोर की शांति में जैसे ही ये मधुर सुनाई देती थी, घर भी धीरे धीरे जागने लगता। रसोई में चाय चढ़ती रहती, अखबार दरवाजे पर गिरता, और इसी बीच आकाशवाणी से प्रसारित वंदनवार का भक्ति संगीत सुबह को एक अलग ही आत्मीयता से भर देता था। इसके बाद समाचार प्रभात सुनना कई परिवारों की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। देश दुनिया की खबरें सुनाने वाली गंभीर और संतुलित आवाजें लोगों के मन में बस जाती थी। उस दौर में ना बहुत से ऐसे समाचार वाचक हुए जैसे मेलविन डिमेलो, देवकीनंदन पांडे, सुरजीत सेन, लतिका रत्नम और विनोद कश्यप। ये समाचार वाचकों की आवाज ही ना घर घर में पहचानी जाती थी।

और न लोग उन्हें देखे बिना भी जसिन की आवाज के जरिए ही उन्हें पहचान लेते थे। सुबह 7:45 बजे प्रसारित होने वाला शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम संगीत सरिता भी श्रोताओं की सुबह का अहम हिस्सा था और है, जो आज भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहज ढंग से समझने वाला यह कार्यक्रम पीढ़ियों से संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय रहा है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है, उस दौर में ही नहीं आज भी कई लोग अपनी घड़ियों का जो समय है ना, वह आकाशवाणी के समय संकेत और समाचारों के प्रसारण से मिलाते हैं। आकाशवाणी की समयबद्धता पर लोगों का भरोसा आज भी वैसा ही बना हुआ है। कई घरों में बच्चे स्कूल की तैयारी करते हुए रेडियो सुनते थे तो बुजुर्ग विविध भारती, छाया गीत और हवा महल जैसे कार्यक्रमों की चर्चा किया करते थे। रेडियो केवल सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं था, यह घर के वातावरण का हिस्सा था। उसकी आवाज में एक अपनापन, एक ठहराव है। आकाशवाणी आज भी नए कलेवर में बहुत से FM चैनल्स और मीडियम वेव चैनल्स के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नित नए कार्यक्रमों के जरिए श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है। आज समय बदल गया है, सुबह हमारी तेज हो गई है, लेकिन आकाशवाणी की भी आत्मीय सुबह आज भी स्मृतियों में उसी गर्माहट के साथ बसी है जब घर सचमुच इनकी आवाज से धीरे धीरे जागता था। तो आइए रेडियो की इस सुबह को फिर याद करें और सुने येसुदास की आवाज में ये एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: फिल्म हैसियत में आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में, जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के डिजिटल दौर में ना बच्चों के हाथ में किताबों की जगह धीरे धीरे स्क्रीन ने ले ली है।

और जानकारी तो अभी क्लिक पर मिल जाती है, लेकिन किताबें केवल जानकारी नहीं देती थीं, वे बच्चों की सोच, कल्पना और संवेदनशीलता को भी आकार देती थीं और हैं। देखिए, बचपन में पढ़ी गई कहानियां, कविताएं और चित्र, और उनमें जो ये जो पुस्तकें होती थी ना, जिनमें चित्र होते थे, उनका असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता था। वे बच्चों को धैर्य सिखाती हैं, नए सपने देखने की प्रेरणा देती हैं और सही गलत को समझने की समझ भी विकसित करती हैं। एक बच्चा जब कहानी पढ़ता है ना, तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो पात्रों के साथ हंसता है, उनके दुख महसूस करता है और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनना सीखता है। आज जरूरत इस बात की है कि घरों में किताबों के लिए एक छोटा सा कोना फिर से बनाया जाए, मानेंगे ना? और माता पिता यदि बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, उन्हें कहानियां सुनाएं और किताबों को उपहार देने की आदत उन्हें विकसित करें, तो पढ़ने का जो संस्कार है ना, वो सहज रूप से बच्चों के जीवन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बचपन में जो हाथ किताबों तक पहुंचते हैं, वे अक्सर सपनों तक पहुंचने का रास्ता पा लेते हैं। देखिए, इसी पर एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रही हूं। किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। धीरे धीरे उनकी छोटी दुनिया में नए सपनों के रंग भरती हैं। कभी कहानी बनकर हंसाती हैं, कभी चुपके से सीख दे जाती हैं। जो बच्चे किताबों से दोस्ती करते हैं, उनकी सोच हमेशा बड़ी हो जाती है। और जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपके जीवन में खुशियां होती हैं, तो आपको सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, आपको कायनात की हर चीज बहुत सुंदर लगने लग जाती है ना?

बालिका वधु, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अमित कुमार की। दोस्तों, आपके साथ जो प्यार है, जो एक रिश्ता है, उसकी जो एक हमें झलक है, वो आपकी ईमेल के माध्यम से हमें मिलती है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े कौन हैं। जी हाँ, ये है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। लिखते हैं सोनाली जी, नमस्कार। दूसरों को उतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए जितनी जल्दी हम ईश्वर से खुद के लिए माफी की उम्मीद रखते हैं। बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात आपने हमारी उस विचार के लिए के साथ जोड़कर कही है जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। धन्यवाद आपका। फिर इसके बाद हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, ये है गौरी शंकर जी, और ये नांगलोई से हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं, सोनाली बेटा राम राम। मुझे याद है रेडियो सुनते हुए करीब 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन भी ना सुनी तो अजीब सा लगता है। उस समय विविध भारती और रेडियो सिलोन सुनते थे, आज भी यही आदत है रेडियो सुनने की। आगे आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम जानदार पेश होता है और गानों में भी तबीयत खुश हो जाती है। शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर एक और हमारे पास चिट्ठी आई है, ये आई है सुदर्शन मुखी जी की, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। लिख रहे हैं, आदरणीय सोनाली जी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। और आप लिख रहे हैं कि आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, अनमोल बातें हैं, रोचक जानकारियां हैं। फिर आप लिखते हैं, दो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं कि सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। फिर एक और चीज लिखते हैं कि रिश्ते और विश्वास खराब एक पल में किए जा सकते हैं, जबकि उनको बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए, ऐसे ही रिश्ते हमने भी आपके साथ बनाए हैं, तो इस रिश्ते को बनाए रखिएगा और हमारे साथ हर दिन जुड़िएगा, कहाँ, घर आंगन में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गर्मी का मौसम आते ही बिजली की बढ़ती खपत और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषय फिर से चर्चा में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे समय में सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी मानी जा रही है, बल्कि आम लोगों के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती जा रही है। इसी दिशा में ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक योजना, जिसकी बात आज हम आपके साथ कर रहे हैं। वो कौन सी है? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आइए इसके बारे में आपको और भी बातें बताती हूँ। जैसे देश में ना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अब दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत ना घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें और बिजली खर्च में राहत पा सकें। योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक है ना, उसका वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उसके पास खुद का घर होना और एक वैध बिजली कनेक्शन होना बहुत जरूरी चीज है। साथ ही घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। और जिन उपभोक्ताओं ने पहले किसी अन्य सरकारी रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लिया है ना, वे इसके लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। मतलब आपको जो भी आपको यहाँ पर अगर आवेदन करना है, तो आप पहली बार ही आवेदन करने वाले होने चाहिए। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के अधिक से अधिक घरों और को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदन और विस्तृत जानकारी आप इसके आधिकारिक पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो है solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। ये है सोलर रूफटॉप, यानी solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। आज जब बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है ना, ऐसे समय में सौर ऊर्जा जो है भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और एक बहुत अच्छा स्रोत बनती जा रही है। तो क्या है ना कि अब घरों की छतें सिर्फ छांव ही नहीं देंगी, बल्कि ऊर्जा और बचत का नया रास्ता भी बनेंगी।

दोस्तों, आज ना डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही, बल्कि ये शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और संवाद का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ना महिलाओं की डिजिटल दुनिया में बढ़ती भागीदारी समाज में एक बहुत सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। आज महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, घर से छोटे व्यवसाय चला रही हैं, डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं और डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी प्रतिभा और विचारों को नई पहचान दे रही हैं। कई महिलाएं घर के बने उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और खाने की सामग्री का व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता के प्रयासों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। दोस्तों, सरकार की जो डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी जो पहलें हैं और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, इनके माध्यम से महिलाओं को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। आज महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट निर्माता, उद्यमी और बहुत अच्छी प्रोफेशनल्स के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। कई महिलाएं हैं जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं वो घर से ही काम कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक होना आज समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं डिजिटल रूप से सशक्त होंगी ना, तब परिवार और समाज दोनों उनसे ज्यादा सशक्त होंगे। तो तकनीक केवल मशीनों की दुनिया नहीं है दोस्तों, यह अवसरों की भी दुनिया है और आज महिलाएं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बना रही हैं। उन्हें सपनों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के जो सपने उन्होंने देखे हैं, वो सपने उनकी जिंदगी में खुली आंखों से भी देखे जा रहे हैं और अब वो बहुत आगे बढ़ रही हैं।

फिल्म गोलमाल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अब देखिए, सपने तो तब आएंगे जब नींद आएगी, और नींद तब आएगी जब हमको जो हमारा माहौल है वो ठंडा मिलेगा। और इस भीषण गर्मी में हम सभी इतने परेशान हैं कि हम लोग बस इस गर्मी से खुद को बचाने के उपाय सोचते रहते हैं। देखिए, अब लू का ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी हो चुका है, और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सभी से इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी और लू से बचने की हम सभी से अपील की है, और बहुत से उपाय भी उन्होंने बताए हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि गर्मी में लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। प्यास न लगने पर भी रुक रुक कर दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले 1-2 गिलास पानी या छाछ पीकर जरूर निकलें। और ना शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ना नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, इनका सेवन बढ़ाएं। जितना हो सके कॉफी और चाय और दूसरी तरह के किसी भी नशे की चीज से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। फिर आप सही पहनावा जरूर रखें। देखिए, गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी सोखते हैं, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सूती के ढीले ढीले कपड़े पहने। बाहर जाते समय हमेशा गमछा या दुपट्टे से सिर और कान को अच्छे से ढकें। हाँ, और आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस और सिर के लिए टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करने से आपके स्किन को बहुत लाभ होगा, और हमेशा एक छाता जरूर साथ रखें। तो बस ये कुछ उपायों का आप अपने जीवन में पूरा पूरा उपयोग कीजिए, और इस गर्मी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ जो है फिल्म सितमगर का और आवाज है किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की। इस गीत के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है आपसे और बात हम और नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes. Stressing about increasing difficulties caused by the heat in daily life, Mr. Modi said that in such a weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside their homes, balconies, rooftops, shops or offices, keeping in mind the animals and birds. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto during the second day of his visit to Canada. The Commerce and Industry Minister said the meeting was aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu and discussed growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaborations. The ministry said that both sides also reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding the CEPA negotiations by the end of the year. This was followed by Canada-India Investment Roundtable, co-chaired by both the ministers. United States Senator Lindsey Graham has questioned Pakistan's role as a possible mediator between the U.S. and Iran, saying it cannot be seen as neutral because of its

एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने भारतीय सिनेमा में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को एक अलग ऊंचाई दी। भारत में नियो नॉयर शैली लाने वाले निर्देशक जिन्होंने सस्पेंस थ्रिलर के साथ ही पारिवारिक और प्रेम कहानियों को भी बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक राज खोसला है कलाकार बेमिसाल की आज की शख्सियत और मैं हूं रजनी। कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही हिट फिल्म मेरा साया से। आवाज है इस गीत में आशा भोसले की।

राज खोसला ने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी निर्देशक बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो गायक के रूप में नाम कमाना चाहते थे। 31 मई 1925 को पंजाब के रोहान में जन्मे राज खोसला ने शास्त्रीय गायन का विधिवत प्रशिक्षण भी लिया था। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको इस गीत के बाद, जो कि हमने चुना है मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लेकर खोसला मुंबई आ गए। कुछ समय उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक स्टाफ के तौर पर काम भी किया और जब उनकी मुलाकात देवानंद से हुई तो देवानंद ने राज खोसला के भीतर छुपे डायरेक्टर को पहचाना और उन्होंने ही राज खोसला को गुरुदत्त को असिस्ट करने का सुझाव दिया। स्वतंत्र निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म मिलाप थी। 1954 में आई इस फिल्म में देवानंद और गीता बाली जैसे बड़े सितारे थे मगर ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई। लेकिन इसके दो साल बाद आई CID ने खोसला को स्टार निर्देशक बना दिया। तो इसी फिल्म से यानी कि CID से आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में ये लोकप्रिय गीत।

सीआईडी एक क्राइम थ्रिलर थी जिससे राज खोसला ने अपने स्टाइलिश शॉर्ट्स और इनोवेटिव सॉन्ग पिक्चराइजेशन से एक अलग पहचान बनाई। खोसला हॉलीवुड डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के मिस्ट्री थ्रिलर से काफी प्रभावित थे। सीआईडी के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाई, जैसे कि मेरा साया, वो कौन थी, अनीता और काला पानी। काला पानी से सुनवाते हैं आपको गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी एट 90 पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज बात कर रहे हैं हम जाने माने डायरेक्टर राज खोसला की। राज खोसला को महिलाओं का निर्देशक कहा जाता है, एक निर्देशक जो महिलाओं को समझता था और अपनी फिल्मों को महिलाओं के नजरिए से पेश करता था। वो कभी एक पैटर्न में बंद कर नहीं रहे। सस्पेंस थ्रिलर के अलावा दो रास्ते, दो बदन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी पारिवारिक फिल्में और एक मुसाफिर एक हसीना प्रेम कहानी जैसी रोमांटिक फिल्में भी उन्होंने दी। वहीं मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और दोस्ताना जैसी एक्शन फिल्में भी खोसला ने बनाई। उनकी फिल्म 16 साल एक रात की कहानी थी। इसी तरह बम्बई का बाबू फिल्म में उन्होंने नायक को एक एंटी हीरो के रूप में पेश किया। तो बम्बई का बाबू से ही आपको सुनवाते हैं अगला गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

फिल्म निर्देशन के साथ साथ खोसला ने कई फिल्मों की कहानी और पटकथा भी लिखी, जैसे मिलाप, प्रेम कहानी, कच्चे धागे की कहानी उन्होंने लिखी। इनके अलावा 16 साल की पटकथा भी उन्होंने लिखी और एक मुसाफिर एक हसीना की कहानी और पटकथा भी राज खोसला की कलम से ही निकली थी।

राज खोसला की फिल्मों की कामयाबी में उनके संगीत का भी अहम योगदान रहा, क्योंकि वो खुद म्यूजिक बैकग्राउंड से थे और उन्हें संगीत की गहरी समझ थी, इसलिए उनकी फिल्मों के गीत बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। 1980 में आई फिल्म दोस्ताना की कामयाबी के बाद उनकी सफलता का ग्राफ नीचे जाने लगा। इसके बाद राज खोसला ने फिल्मी दुनिया से खुद को अलग कर लिया और 9 जून 1991 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली।

इस लोकप्रिय गीत की फिल्म का नाम था वो कौन थी और आवाज थी लता मंगेशकर की। लगभग 25 फिल्मों का निर्देशन करने के अलावा राज खोसला ने एक फिल्म का निर्माण भी किया था। 1972 में आई ये फिल्म थी दो चोर। धर्मेंद्र और तनुजा स्टारर इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। मरणोपरांत राज खोसला की याद में भारत सरकार द्वारा दो अलग अलग डाक टिकट जारी किए गए। पिछले साल हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राज खोसला को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी लोकप्रिय फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई थी।

दो रास्ते फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आज हमने याद किया हिंदी फिल्म उद्योग के जाने माने निर्देशक राज खोसला को, जिन्होंने फिल्म निर्देशन के अलग अलग शैलियों को आजमाया और हर

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का एयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। आईएमडी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहान के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी की गुंजाइश रखी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीक़ेकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: दिल्ली में चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी का काम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव फहरिस्तों का मुसविदा 5 अगस्त को शाये किया जाएगा और हतमी चुनाव फहरिस्त इस साल 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। दिल्ली के आला चुनाव अफसर ने कहा कि खसूसी नजरसानी का असल मकसद यह है कि कोई भी अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से बाहर न रह जाए और गैर अहल वोटर फहरिस्त में शामिल न होने पाए। जनाब अशोक कुमार ने कहा कि बूथ सतह के अफसर अगले महीने की 30 तारीख से घर घर जाकर दिल्ली चुनाव फहरिस्तों की तस्दीक करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी को निजाम की जरूरत को

0: उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरका अहद का एआदा भी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वह जिसमें पानी की कमी न होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वह अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम भी करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकोनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मिश्र के खत्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले तीन चार दिन के दौरान केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के बाद हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉ मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक उसने तीन तलबा की मुलजिम पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमरीका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वह गैर जानिबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवाता नैनी अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वह बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि यह लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरका अहद का एआदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा।

0: सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगतोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
0: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके ही लोकप्रिय कार्यक्रम उन्नत किसान में। मैं हूं आपके साथ कमलेश मुद्गल और मेरे साथ हैं
1: रजनीश।
0: और रजनीश जी, जो गर्मी का हाल है बस बहुत ही बुरा हाल है, बढ़ता तापमान कर रहा हमें परेशान है
1: जी,
0: है ना। हम तो अपने आप को बचाने के लिए ठंडी जगह ढूंढ रहे हैं या शिकंजी बनाकर सत्तू का घोल ये सब हम लोग पी रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है जो हमारी फसलें हैं उनका क्या हल होगा, उनको हम कैसे बचाएंगे?
1: जी बिल्कुल सही कहा कमलेश। और देखिये, कहते हैं ना, मौसम का असर हर जीव पर दिखता है और पेड़ पौधों पर भी दिखता है। और यही वजह है कि हमें अपना तो ख्याल रखना ही है। जब इतनी गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में जो नो तपा की जो बात चल रही है आजकल, तो उसमें अपना तो ख्याल रखना है लेकिन अपनी फसलों का भी ख्याल रखना है।
0: बिल्कुल।
1: और वो ख्याल कैसे रखेंगे, ये विषय अपने आप में बहुत गंभीर और बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों से तो उनको भी ये लगता है कि भाई इस समय जो लू चल रही है, अगर मेरी फसलों को नुकसान हो गया तो मुझे उससे जो मिलना चाहिए था बेनिफिट वो कैसे मिलेगा, और उनकी चिंता भी बढ़ जाती है। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि भाई आप चिंतित ना हो, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास है
1: जी। और यही वजह है कि हम जो हमारा ये उन्नत किसान कार्यक्रम है, इसमें हम बहुत सारे विशेषज्ञों को, कृषि विशेषज्ञों को बुलाते हैं, ताकि जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो भी समस्या है, जिज्ञासा है, उस सवाल का जवाब हमें मिल जाए।
0: बिल्कुल। और वो भी ये है कि जैसे हम फोन नंबर बताएंगे, वो फोन नंबर मिलाएंगे और हमारे स्टूडियो में सीधे हमारे जो विशेषज्ञ है उनके पास उनका प्रश्न चला जाएगा
1: जी।
0: तो आज का जो विषय है वो हमने चुना है, जायदकालीन फसलों का लू और गर्मी से बचाव। हमारे बीच में हमारे विशेषज्ञ आ चुके हैं, डॉक्टर अनंता वशिष्ठ जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और हमारे फोन नंबर हैं 0112342108123421083, जो 011 है वो दिल्ली से बाहर के श्रोता जरूर लगाए।
1: तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत।
2: धन्यवाद। इन सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जैसा कि आज का विषय है जायदकालीन फसलों का लू और गर्मी से बचाव, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जायदकालीन फसलें होती कौन कौन सी हैं?
2: जी, जैसे कि आप देख ही रहे कि आजकल जायदकालीन हमारी फसलें लगी होती हैं, ये मुख्य रूप से जैसे आपका अप्रैल मई जून में जो फसलें लगती है उसे हम जायदकालीन फसलें कहते हैं। ये कहें कि रबी और खरीफ कि जो फसलें हैं उसके बीच का जो समय हमें मिलता है उसको हम जायदकालीन फसलें कहते हैं। और इसमें जैसे मुख्य रूप से आपकी है मूंग की फसल हम लगाते हैं, जो कि आप कहते हैं दलहनी फसलें हैं, सूरजमुखी को हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कद्दूवर की फसलें हैं, इसमें आप तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, या आपका लौकी है, करेला है, टमाटर, बैंगन, जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो भी अभी हमारी जो है इस समय चल रही हैं। तो ये सारी फसलें जो हमारी जायदकालीन फसलों में आती है
0: जी। जब हम बार बार बात कर रहे हैं लू की और बात ये भी चल रही थी कि अब नौ तपा है तो नौ दिन जो है धरती जो है वो ज्यादा तपेगी, तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि ये लू जो है वो क्या है और इसके कारण क्या है?
2: जी, लू जो है हम जनरली कहते हैं कि लू चल रही है आजकल, तो लू जो है एक गर्म और शुष्क हवा होती है। ये गर्म तो होती है, साथ साथ में इसमें क्या होता है जो नमी होती है वो कम होती है, काफी कम होती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम कहते हैं कि हमारी जो फसलें हैं या पशु हैं या हम खुद हैं जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए ज्यादा नुकसान देती है, क्योंकि शुष्क भी होती है और गर्म भी होती है। और यह जनरली जब हमारा जो तापमान है वो सामान्य से 4.5 से 6.4 के अधिक चला जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी जो गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है। और इसका एक क्राइटेरिया और भी है, जैसे हम प्लेन एरिया चल रहा है तो उसमें अगर 40 डिग्री से ऊपर तापमान चलना शुरू हो गया और ये कंटिन्यूस आपका चल रहा है तो हम कहेंगे कि आपका जो है लू चल रही है। जो कोस्टल एरिया है वहां पे 37 डिग्री हम कहते हैं, अगर उससे ज्यादा तापमान जा रहा है तो आपका लू चलने की संभावना हो जाती है। आपका प्लेन एरिया है वहां पे 35 या उससे ज्यादा जा रहा है तो आपका जो है वहां पे लू चलने की संभावना हो जाती है। तो ये एक क्राइटेरिया है आपका कि आप तापमान के बेस पे भी इसको कह सकते हैं कि आपके लू आने की संभावना है, और आप सामान्य से भी कितना आपका तापमान ज्यादा जा रहा है तो आप उसको कहेंगे कि आपका लू आने की संभावना बढ़ रही है। और ये मुख्य रूप से जैसे अभी हमारी जो उत्तर पश्चिमी भारत है, जैसे हमारा दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो सारे एरिया आ रहे हैं, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तो इसमें आप ये आप देख रहे हैं कि तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है जो प्लेन एरिया है, तो इसमें आपका तापमान 40 डिग्री जा रहा है तो आपका लू आने की संभावना ये आ भी रही है। आपका आप देख ही रहे कि तापमान 40 क्या 45 डिग्री जा रहा है
1: जी।
2: तो आपका अगर 6.5 डिग्री से ज्यादा चला जाता है, आपका 47 या 46 चला जाता है, तो आप कहेंगे कि सीवियर कंडीशन आ गई है, लूप की कंडीशन आ गई। हम ये नहीं कहेंगे केवल प्लेन में ही लू चल रही है, आपके हिल में भी लू चलने की संभावना हो रही है, क्योंकि वहां भी आजकल आप देख रहे हैं कि सामान्य से आपके 4-5 डिग्री 6 डिग्री आप अधिक जा रहा है, कोस्टल में भी लू आने की संभावना पड़ जाती है। लेकिन जो मुख्य समस्या है वो आपकी जो है प्लेन एरिया की है। आपने जैसे पूछा कि क्यों आती है, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण होता है, एक हमारा हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है, उच्च वायुमंडलीय दबाव हो जाता है। हम कहते हैं किसी स्थान जो हमारा है, जो जैसे अगर दिल्ली के कहीं या कोई स्थान है, वहां का जो दबाव है वो उसके सराउंडिंग के दबाव से कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब हमारी हवा, ये जो जमीन गर्म होती है, तो वो जो मॉइस्चर होता है ऊपर उठता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर उठता है तो ऊपर जाके ये कंडेंस होकर बदल जाता है। लेकिन अगर ये जो हाई प्रेशर जो सिस्टम बन रहा है इसमें ये नहीं होता है, ये जो है उसको नीचे ही दबा के रखता है। अच्छा। जो गर्म हवा है ऊपर नहीं जा पाती है, और गर्म हवा जो है आपके नीचे कोई दबाव रहती है, वो सराउंडिंग में उधर ही फैल रहती है, ऊपर नहीं जाती है। तो अगर ऊपर नहीं जाएगी तो आपके बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो आसमान साफ रहेगा। अगर आसमान आपका साफ है तो जो सूरज की किरणें हैं वो बाहर आपके डायरेक्ट आपकी पड़ रही है, तो और उसको और गर्म कर रही है, है ना। अब बारिश नहीं होगी तो आपका क्या होगा, वो
1: गर्मी बढ़ेगी।
2: हाँ, वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, झुलसाने वाली गर्मी और ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ती रहेगी, और आपकी गर्म हवाएं चलती रहेंगी। तो और इसके जो मुख्य कारण और हैं, जैसे अभी एलनिनो वाली कंडीशन हम कह रहे हैं, एलनिनो आपका बन रहा है। ये एलनिनो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा जो प्रशांत सागर है, महासागर है, और जो पेरू के आसपास वाला जो पोर्शन है, वहां पे जो तापमान जो है ना वो सामान्य से अधिक हो जाता है, तो ये कंडीशन एक वो भी बन जाती है। तो अभी ये भी थोड़ा संभावना बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी जो है हीट वेव की ज्यादा संभावना होती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है ये भी आप बताएंगे, ये तो बन रहे हैं लेकिन क्यों बन रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम ही है, जलवायु परिवर्तन जो मुख्य कारण है। जो आप कह रहे हैं अर्बन कंक्रीट के जो जंगल हम ज्यादा बना रहे हैं, अर्बन हीट हो रहा है उससे, तो कंक्रीट के जंगल बनने से क्या हो रहा है, जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है ना, जो कंक्रीट हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो फिर रेडिएट उसको वातावरण में ही कर रही है। हम वनों की कटाई ज्यादा कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, है ना। तो उसके से क्या होता था कि आपकी जैसे जमीन में छाया ज्यादा रहती थी, आपका मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब हो रहा है ऊपर आसमान में, आपके वहां पे ठंडक ज्यादा रहती थी, जो आपका CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो पेड़ ज्यादा से ज्यादा उसको अवशोषित कर लेते थे। तो ये सारी कंडीशन जो है एक ना कहीं जो है आपका जो मैं कहूंगी हीट वेव जो कंडीशन बन रही है या जो जनरेट हो रहे वो कहीं ना कहीं जो है ये उसका कारण बन रही है या उसको जो है ज्यादा बढ़ावा दे रही है
0: जी, जलवायु परिवर्तन।
2: जलवायु,
0: और जैसे कि हमारे जो पुराने लोग हैं या जो पुराने हमारे पूर्वज हैं वो यही कहते हैं कि लू तो पहले भी चलती थी लेकिन पहले में और अब में बहुत ही फर्क हो गया है। तो जैसे आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन और उसका कारण भी हम ही है, तो अब हमें उसके प्रति जो है सचेत भी होना होगा।
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो डॉक्टर अनंता, जैसे आपने बताया कि अब ये टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे रेड अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, तो मानव शरीर पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन फसलों पे इसका क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होता है या दुष्प्रभाव भी होता है?
2: नहीं, इसका तो देखो ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही होगा, क्योंकि मैंने कहा ना लू एक गर्म और शुष्क हुआ है, तो गर्म के साथ साथ ये शुष्क है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो जब ये किसी चीज के भी संपर्क में आएगी, चाहे हम है या हमारे पशु है, पेड़ पौधे हैं, तो उससे मॉइस्चर निकालेगी ना, नमी को अवशोषित करेगी। तो जैसे हम भी अगर जाते हैं धूप में, बाहर खड़े रहते हैं, तो एकदम से हमको हीट स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं ना ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर से जो मॉइस्चर है वो अवशोषित हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ऐसे पौधों में भी होता है, जब ये गर्म हवा उसके नजदीक या लू जो है उसके नजदीक आती है, जो हमारी फसलें लगी हैं या हमारे पेड़ पौधे लगे हैं उसके नजदीक आती है, तो वहां से वो नमी अवशोषित करती है। तो नमी अवशोषित करने से जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें से पानी की कमी होने लग जाती है, तो एक मुरझाने से वो तो उसके बाद क्या होता है, अगर उनमें फल बन रहे हैं या फूल बन रहे हैं तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, फूल बन रहे झड़ रहे हैं, या उसमें जो है आपका फर्टिलाइजर की जो होता है, फल बनने की जो होते हैं उसके बाद वो रुक जाता है, तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी, उनके फल बनने की अवस्था कम हो जाएगी या शून्य हो जाएगी, या उसमें अगर बने भी हैं तो आपके झड़ जाएंगे या उनकी गुणवत्ता

0: खराब हो जाएगी। तो इस पे फलों का सबसे जो मुख्य कारण है उसमें एक हीट स्ट्रेस आ जाता है
1: जी।
0: जो तनाव आ जाता है पौधों में भी एक स्ट्रेस आ जाता है, तो ये एक मुख्य कारण है। दूसरा अगर इसमें जो है इसके अलावा जैसे आपका है लू से अगर मृदा है तो मृदा से ज्यादा नमी अवशोषित हो जाएगी। मृदा से नमी अवशोषित हो जाएगी तो मृदा में आपका क्या होगा,
1: पानी की कमी हो जाएगी।
0: हवा तेज है तो भूक्षरण होना शुरू हो जाएगा, तो मृदा भी आपकी खराब हो जाएगी, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपके जो है फसलों पे ही उसका असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा
1: जी।
2: तो अब प्रभाव की बात तो कर ली, लेकिन प्रभाव के साथ अब बचाव क्या क्या हो सकते हैं, और खास तौर से जब पानी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अनंता सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से सिंचाई करें, क्योंकि अब पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सिंचाई कैसे करें, कब करें और क्या विधियां होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से
0: जी। जैसे कि जो है इसमें सबसे आसान तरीका तो यही कहेंगे हमको, सिंचाई करनी होती है ना, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो एक तो पौधों को नमी मिल जाएगी, नमी मिल जाएगी थोड़ा तापमान भी कम हो जाएगा, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रखना है हमको सिंचाई कब और कैसे करें। जनरली क्या करते हैं, कई बार हम करते हैं कि फ्लड इरीगेशन कर देते हैं, पानी छोड़ देते हैं खेत में और खेत में पूरा पानी भरा रहता है, तो उसमें आपका फायदा नहीं होगा, उसमें आपकी फसलों को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका पानी खड़ा है खेत में और आपकी तेज 40-45 डिग्री आपका तापमान जा रहा है तो पानी को और गर्म करेगा ना, तो पानी गर्म हो जाएगा और आपकी फसल उसमें है तो फसल में क्या होगा, उसको दुष्प्रभाव पड़ेगा आपका, उसका सकारात्मक के बजाय उसका प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि आपको कम से कम अंतराल पे सिंचाई करनी है और सिंचाई ड्रिप या स्प्रिंकलर इससे विधि से करनी है। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो आपका पानी का बचत हो जाता है, कम पानी लगेगा, दूसरा आप उन्हीं के जड़ों में दे रहे हैं, पानी आपका ठहर नहीं रहा है खेत में, आपका रुक नहीं रहा है, तो जो आपका हीट एब्जॉर्ब होना है पानी, जो सनलाइट ज्यादा आ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो उससे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ये है कि आपकी पानी कब देना है, आप सुबह या शाम को पानी दे सकते हैं खेतों में, सुबह भी तापमान थोड़ा कम रहता है, शाम को भी तापमान थोड़ा कम रहता है, तो सुबह और शाम का उसका सिंचाई कर सकते हैं अपने पौधों में, और एक आपको समय समय पर देना, कम सिंचाई और बार बार, ये आपको एक करना है। और इसके अलावा और भी आप उपाय कर सकते हैं, जैसे मल्चिंग का हम प्रयोग कहते हैं, मल्चिंग का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो मृदा की जो नमी है वो वातावरण में इवेपोरेट नहीं होती, वाष्पीकरण नहीं होता है, वो उसमें मृदा में ही रहती है, और दूसरा जो मृदा का जो तापमान है वो जो है थोड़ा सा कम बना रहता है, तो इसके लिए मल्चिंग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग में आप जैसे पुरानी जो फसलें हैं उनके अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं, उसको जलाए नहीं। जनरली क्या करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि इसका क्या करें, इसको जला ले या ऐसे करें, तो उसके नुकसान काफी होता है। अगर आपने जला लिया तो प्रदूषण भी आपका होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी बाध्य हो जाती है। उसका प्रयोग अगर आप मल्चिंग के रूप में कर सकते हैं, विशेषकर जैसे अभी जायदकालीन जो फसलें चल रही हैं, तो उसके कई फायदे, एक तो मैंने कहा तापमान आपका थोड़ा सा बाहर का जो वातावरण है उसके तापमान से कम रहेगा, जो मृदा की नमी है वो वाष्पोत्सर्जन उसका कम होगा, तो आपकी थोड़ी नमी बनी रहेगी। इसके साथ साथ जो है वो जो है विघटित हो गए जो है उसमें मृदा में मिल जाएगा, तो आपका जो कार्बनिक पदार्थ है वो मृदा में ज्यादा हो जाएंगे, तो कार्बनिक पदार्थ जो अगर उसमें ज्यादा होते हैं, मृदा में ज्यादा होते हैं, तो उसके भी कई फायदे होते हैं। वो एक तो उसकी मृदा की गुणवत्ता आपकी बढ़ गई, दूसरा जो है पानी को अवशोषित रखना, देर तक मृदा में अवशोषित रखना, उसको भी वो कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा आप जैसे अभी हम कहते हैं कि आप ग्रीन मैन्योर का प्रयोग करें या गोबर की खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, तो ये आप इसको कर सकते हैं, इसका भी कई फायदे होते हैं। जैसे गोबर की खाद है या ग्रीन मैन्योर आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे आपने पानी डाल दिया तो काफी समय तक पानी को अपने अंदर रखती है और धीरे धीरे उसको रिलीज करती है। बाकायदा मैं कहूंगी जैसे किसान भाई बहन यूरिया का डालते हैं या जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं उसको कम से कम यूज करें या ना के बराबर यूज करें, क्योंकि अगर आप इस मौसम में 40 और 45 डिग्री के टेम्परेचर में अगर यूरिया अपनी फसलों में डाल रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? एक तो मृदा में आपकी नमी कम है, दूसरा आपका वातावरण में तापमान इतना ज्यादा है, जो यूरिया आपने डाला भी हो तो नाइट्रिफिकेशन होगा, वो वायुमंडल में चला जाएगा, वायुमंडल भी आपका प्रदूषित हो गया, तो आपको फायदा होने की बजाय उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जितना से जितना है, और उसमें क्या यूरिया क्या तापमान भी थोड़ा बढ़ाता है
1: जी।
0: तो तापमान ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आपका, उसमें उसके ऊपर से आप

0: भी मिले रहते हैं क्या?
1: हाँ हाँ मैम प्लीज,
0: सुबह को भी मिले रहते हैं
1: जी।
0: तो एक बार जो है ना आप अपनी जो वहाँ के आसपास की मृदा है ना, मृदा की जांच करा लीजिए। मृदा में अगर किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो उसका उसी पोषक तत्व को आप उसमें डालिए, और साथ साथ जो है समय समय पर जो है कम अंतराल पे आप जो है, जैसे मैंने कहा ना, कम पानी आपको उसमें डालना है, समय समय पे आप उसको डालिए। और पानी ऐसे समय पे डालिए जब आपका थोड़ा सा तापमान कम रहता है, या तो सुबह के दफे आप डालें अर्ली मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले, या रात को डालना है क्योंकि अभी तो 6-7 बजे भी तापमान काफी रहता है, तो उस समय आप उसमें पानी डालिए। और मृदा की जरूर जांच कराइए क्योंकि आपके जो है पोषक तत्व की भी कमी हो सकती है। और मुख्य रूप से तो इस समय जो होता है आपके लू या गर्म हवा चलने से भी आपकी पत्तियां जो है मुरझा जाती है।
2: तो डॉक्टर साहब, जब अभी आपने बात की है किस्मों की, तो किस्मों से ही मैं ये पूछना चाहती कि क्या जो गर्मी से बचाव करने वाली किस्में या जो गर्मी को ज्यादा सहन करने वाली किस्में है, तो वही किस्में हमारे किसान भाई बहन लगाते हैं या कुछ ऐसी किस्में आप लोगों ने विकसित की है?
0: जी, जैसे कि गर्मी की किस्में अलग होती है और आपकी जो है बरसात में जो फसलें लगती है उसकी किस्में अलग अलग होती हैं। और किसान भाई बहन जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो भी संस्थान है, जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, इसके अलावा भी हमारे पूरे भारतवर्ष में विभिन्न संस्थान है, उनके संपर्क में रहिए और उनसे समय समय पर जानकारी लिए। जब भी आपको कोई भी फसल लगानी है और आप किस मौसम में लगा रहे हैं, किस क्षेत्र में लगा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष और मौसम विशेष, ये जो इसके हिसाब से आपको जो है वैरायटी लगानी। ये नहीं कि जो मैं वैरायटी दिल्ली में लगा रही हूँ या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लगा रहे हैं, एनसीआर में लगा रहे, वो आप जो है केरल में भी लगाएं या तमिलनाडु में भी लगाएं, ऐसे नहीं। वो वहाँ की जो वैरायटी होगी वो अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, तो सब जगह की। तो आप अपने निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसके संपर्क में रहे और अपने क्षेत्र विशेष और मौसम विशेष के आधार पर अपनी फसल का चयन करें और अपनी किस्मों का चयन करें।
2: तो हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई और बहन हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको इससे काफी जानकारी मिलती है। और जब जानकारी की बात करते हैं तो एक जानकारी रजनी जी हम उन्हें और भी दे दें कि खरीफ फसल चक्र 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28 और 29 मई को भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार NASC कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली में होने जा रहा है
3: जी।
2: और सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देना और खरीफ मौसम के लिए तैयारी यानी उसकी जो रणनीतियां हैं उनको निर्धारित करना है। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग सम्मेलन का एक प्रमुख उद्देश्य और अनावश्यक उर्वरक उपयोग को कम करना होगा और मिट्टी के संतुलित स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी होगा।
3: और कमलेश जी, एक बात और बहुत जरूरी है सम्मेलन के बारे में, जो भी सुन रहे हैं कि यह सम्मेलन आगामी राष्ट्रव्यापी जो कि खेत बचाओ अभियान के लिए रणनीतियों को संरेखित कर रहा है और जो 1 जून से शुरू होगा और किसानों को मिट्टी के विश्लेषण के आधार पर उर्वरक के इष्टतम प्रयोग पर सलाह देगा। प्राकृतिक खेती खरीफ के मौसम में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देना और उन्हें एकीकृत करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे और जो पहले दिन है उसमें थीमेटिक डिस्कशन होगी और दूसरे दिन जो पॉलिसी लेवल पर कि किस तरह से कृषि की नीतियां बने, इन सभी विषयों को लेकर उस पर चर्चाएं होंगी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें शायद बहुत सारे नए निष्कर्ष निकल कर आएंगे जो हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे।
2: बिल्कुल, क्योंकि अभी बात तो हम कर रहे हैं जायदकालीन फसलों की और उनका भी लू और गर्मी से बचाव की बात चल रही थी, तो इसी बीच में हमने खरीफ फसल के बारे में भी अपने जो कृषि मित्र हैं उनको जानकारी दे दी है। तो डॉक्टर साहब, जब हमने ये सब चीजें कर लिए हैं, बचाव की भी हम तैयारी कर रहे हैं और जो समय समय पर हमारे किसान भाई बहन अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी वो कहां से लेंगे?
0: जी, जैसे कि इसके लिए, जैसे लू और गर्म हवा चलने के लिए सबसे पहले तो आपको मौसम की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आजकल आप देख ही रहे मौसम में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है। तापमान कभी अचानक से 45 डिग्री चला जाता है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है, तापमान आपका 40 से नीचे आंधी आ जाती है ना, आंधी तूफान या बिजली गिर रहा है, तो इसके लिए भी लू और आपका जो गर्म हवा आज जो विषय चल रहा है इसके लिए भी आपको मौसम की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आपका ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से जो है आप लोग तो समय समय पर मौसम की जानकारी देते रहते ही, तो मैं किसान भाई बहनों को तो सबसे पहले यही कहूंगी कि आप कभी भी खेतों में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना रेडियो ऑन कीजिए, वहां से मौसम की जानकारी लीजिए, आज आपको क्या कृषि कार्यकलाप करने हैं, उसके बाद आप अपने खेतों में कृषि कार्यकलाप करें। इसके अलावा भी कई बार है कि आप चलो आपके पास रेडियो नहीं है तो या आपके पास ये व्यवस्था नहीं है, आप कहीं खेत में ही है या ले जाना भूल गए हैं तो आपके पास मोबाइल है
3: जी,
0: तो मोबाइल पे भी आप सुन सकते हैं या उस पर डिफरेंट ऐप हैं आपके डेवलप हैं, मैगदूत ऐप है, मौसम ऐप है, उसमें भी आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग है, वो भी समय समय पे ये जानकारी देता रहता है। तो ये देखिए कि आप, मैंने पहले भी कहा कि प्लेन में अगर 40 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है तो आपकी फसल और हवा तेज है तो ये सोचो कि आपके लू आने की संभावना है, लू आएगी आपकी, तो आपको अपनी फसलों का ध्यान रखना है। मैं तो कहूंगी फसलों ने आपको अपने पशुओं का भी इसमें ध्यान रखना है, लू से बचाव के लिए उनको भी जरूर उनको शेड में रखिए, उनको बार बार पानी पिलाइए क्योंकि उनमें भी डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाती है तो उनको वो बोल नहीं पाते हैं बेचारे, तो उनको जो है आपको बार बार पानी पिलाना है और वो सब उनको उनकी भी सुरक्षा करनी है, फसलों के साथ साथ अपने पशुधन की भी रक्षा करनी है। तो आप अवेयर रहिए, जानकारी आप प्राप्त कीजिए, विभिन्न चैनल है आपके, रेडियो है, टेलीविजन है, आपके न्यूज़पेपर है आपके, तो इन सबसे, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम तो आपके हमेशा साथ है किसानों के साथ संस्थान, तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इनके संपर्क में रहिए, समय समय पर जागरूक रहिए, जानकारी लिए, अपनी फसलों को बचाइए, आप फसल बचाएंगे तो आपकी उपज अच्छी रहेगी, उत्पादकता अच्छी रहेगी, आप खुशहाल रहेंगे तो हम लोग खुशहाल रहेंगे, हमारा देश खुशहाल होगा,
2: पर खुशहाली दिखेगी तो पूरा देश खुशहाल रहेगा।
3: डॉक्टर अनंता, जैसे कि आपने बताया कि जानकारी बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे मौसम विभाग समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है,
0: हाँ जी,
3: क्या पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र भी इस तरह की कोई एडवाइजरी जारी करते हैं?
0: हाँ जी,
3: जिसके बारे में किसान को हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि भाई ऐसी कोई एडवाइजरी जारी हो रही
0: है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो हमारा संस्थान ही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, तो हम जो हमारे पास एक ग्रामीण कृषि मौसम GKMS ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ये एक परियोजना है, उसमें हर मंगलवार और शुक्रवार को मौसम आधारित कृषि परामर्श सलाह हम देते हैं, तो उसमें हमको पूर्व पिछले मौसम कैसा रहा, पिछले सप्ताह या पिछले 10-15 दिन में मौसम कैसे रहा, आगे 5 दिन में मौसम कैसे करवट बदलेगा, ये जानकारी रहती है, और क्या फसलें अभी खेतों में है तो वो इसकी जानकारी है, तो इसके आधार पर मौसम आधारित क्या उस खेती में क्या कृषि कार्य करने वो हम परामर्श उनको देते हैं। और हमारे पास जैसे किसान भाई बहनों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं हमारे, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हम उनको ये जानकारी देते रहते हैं समय समय पर, हर मंगलवार या आपके हर शुक्रवार को, इसके अलावा हर शनिवार को हमारा एक पूसा समाचार भी जाता है, तो उसके माध्यम से भी उनको जानकारियां मिलती रहती है
2: जी। तो यानी जो हमारे किसान भाई बहन है वो सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे भी जुड़े हुए हैं, उनको मौसम का जो पूर्वानुमान भी पता चल जाता है और पिछले समय एक हफ्ते का मौसम कैसा रहा उसके बारे में भी उनको पता चल जाता है रजनीश, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और उनके लिए भी एक उपयोगी जानकारी है।
3: बिल्कुल, तो और डॉक्टर साहब बस आखिर में 30 सेकंड में इस पूरे विषय को समाप्त करते हुए हमारे किसान भाई बहनों के लिए आप क्या एडवाइजरी देंगे?
0: जी, मैं तो किसान भाई बहनों को यही कहूंगी कि आजकल जो मौसम आधारित खेती की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मौसम जैसे करवट बदल रहा है हर दिन, इसका जो है उतार चढ़ाव इसमें होता रहता है, तो आप मौसम आधारित खेती कीजिए, इससे आपके रिसोर्स भी सेविंग होगी, रिसोर्स में जैसे पानी की सेविंग होगी, आपका समय पे आप उच्च उपयुक्त वातावरण मिल जाएगा आपकी फसलों को, तो मौसम आधारित अगर आप खेती करते हैं तो आपकी जो उपज में बढ़ोतरी होगी, आपकी गुणवत्ता अच्छी होगी, आपका जो रिसोर्स होगा उसकी सेविंग होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी।
2: तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दी और डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: और देखिए इसी के साथ हमारा समय भी हो चला है और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल और
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक जो हैं वो है शिवनंदन लाल
3: जी, और इसी के साथ मुझे रजनीश को
2: और मुझे कमलेश मुद्गल को
3: अनुमति दीजिए, नमस्कार,
2: नमस्कार।

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएफ स्कीम में 3 बड़े सुधारों को मंजूरी दी।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप है, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। श्री वैष्णव ने कहा कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, पारदर्शी और सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि SIR द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। सेनेटर ने दावा किया कि यह निर्विवाद है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। जी हाँ, और अब आ गई अटेंडेंस लेने की बारी। बुधवार, तो अपनी शुद्ध बुद्ध सभी यहाँ पे रखकर आपके नाम लिए जाएं। अशोक वर्मा जी, मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, हीरामान शेंडे, सुदर्शन मुखी, भूषण खेरा, आप सब लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ताज मोहम्मद साहब भी हैं, संजय साहू पुटियाक भी हैं, सुरेश नारंग, रविन्द्र मोहन दास, और एक मेल आईडी का नाम लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा, मास्टर खिल्लू परवेज भी हैं, प्रताप वर्मा, गुरमीत सिंह, राम झिंगल। अब देखते हैं कौन है वो लकी वन। देखिए कितने सारे मेल्स में तो ये लिखा आ रहा है, कोई भी गाना चला दीजिए हमारा नाम लेके, आए हाय क्या बात है। देखते हैं कि कौन वो लकी वन है जिसका लकी लकी गीत सुना जाएगा। नौ तपा चल रहा है मित्रों, पता है ना आपको, 25 जून से 2 मई तक, 25 मई से 2 जून तक नौ तपा। सूरज जब रोहिणी नक्षत्र में जाता है वो 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी वाले होते हैं। तभी आप देखिएगा इन दिनों सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं आपस में, नहीं होने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी तप जाता है ना। और ये कहावत है कि नौ तपा जितना तपेगा उतना ही अच्छा सावन आएगा, तो ये बड़े कमाल की बात है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अकरम हुसैन प्रिंस जी ये चाह रहे हैं सुनना कौन सा वाला गीत। ये गीत आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम, देखते हैं कौन सा गीत है ये। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन एफएम गोल्ड AIRDaily@gmail.com पर ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक और मधु नायक कहते हैं कि इन्हें गीत सुनना है, खुरा कागज था ये मन मेरा, फिल्म है आराधना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मनभावन सुन रहे हैं आप। आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम जिस पे तेरा। बड़ी सुंदर दार्शनिक सी कहानी है कि एक बार एक दुकानदार, जिसकी दुकान में काफी सारी चीजें थी, मिठाई थी, बिस्कुट थी, चाय की टपरी होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, रस होता है, एक बरनी बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो एक ग्राहक ने पूछा कि इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला इसमें, अरे इसमें कृष्ण है। तो वो समझ नहीं पाया। घर आके ग्राहक को जैसे होता ना एक इनसाइट मिलती है, तो उसे समझ में आया कि अच्छा, जब हमारा मन, मस्तिष्क, दिमाग, दिल खाली होगा तभी तो भगवान बसेंगे। जब आप बहुत ज्यादा क्लटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तब कहां से आराम मिलता है। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहा करते थे योग कक्षा में, आराम, जब आराम करो तो राम आते हैं। और हमारे साथ कौन आए हैं? हमारे साथ आए बोधराज खोरवाल जी, कमला जी, भालू प्रकाश जी। ये सुनना चाहते एक बड़ा मस्ती भरा गीत, झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: बोलो बोलो चुप क्यों हो?
1: आई लाइक यू।
0: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
0: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। तपती तपती गर्मी, कितनी ज्यादा गर्मी। क्या करते हैं गर्मी में, क्या लेते हैं? नींबू पुदीने का पानी लेते हैं, छाछ पिया कीजिए। छाछ तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है और गर्मियों में मीठा रस बहुत जरूरी होता है। अब कई बार लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या शरबत पीते हैं। देखो उसमें चीनी बहुत होती है और उससे ना कफ पैदा होता है, बहुत ज्यादा बलगम होती है। तो उसकी जगह तरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, या बेल का शरबत। अरे बेल का फल, बेल जैसा तो कोई फल ही नहीं है। और इतने कमाल का है इस मौसम में, नारियल पानी वगैरह पिया करो, है ना, खुद भी पियो औरों को भी पिलाओ। संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, जलंधर से लिख रहे हैं इन्हें फिल्म प्यार का मौसम से ये गीत सुनना है, तुम बिन जाऊंगा। आइए जी सुनते हैं ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माय यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन। धर्मेंद्र छीपा जी, जय दिग्दर्शन कौर जी, हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमारे साथ है, कमलकांत गुप्ता जी भी हमारे साथ में है, गिरीश बैम जी जो है ये कह रहे हैं गुड आफ्टरनून रूमी मैडम, प्लीज प्ले द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आंधी। अच्छा जी, इतनी गर्मी में आंधी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं ये। इनके साथ हैं वैशाली, अजिंक्य, रिया, जीत और ये वडोदरा गुजरात से हमको लिखते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। वैसे शिकवा शिकायत जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा आप अंदर से खुश होते जाओगे, अंदरूनी खुशी की बात कर रहे हैं हम।

जी हाँ, जैसे हमने कहा शिकवे शिकायतें जितनी कम होंगी, अपने आप से उम्मीद बहुत होनी चाहिए, लेकिन दूसरों से कम ही हो तो अच्छा है ना। हम ये कह रहे थे कि अब जो है जाने का वक्त हो रहा है ना। मोहम्मद सईद अब्बासी जी कह रहे हैं ईद है, हमको ईदी चाहिए। अमर अकबर एंथनी का गीत सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है आपको सुना देते हैं गीत। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस स्कीम में तीन बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।
1: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में

0: तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा जो फेयर प्राइस शॉप्स है उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा और स्वच्छ पारदर्शी तथा सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों बालकनियों छतों दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। पर्सनल लोन ऑफर।

0: इसे ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई,
0: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप डाउनलोड।

रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: The Indira Gandhi Institute of Development Research, IGIDR in Mumbai, established by the Reserve Bank of India, is inviting applications for professors, associate professors and assistant professors. IGIDR is also hiring for a wide range of non-teaching roles. These positions include Placement Officer, Human Resource Officer, Academic and Student Affairs Officer, Assistant System Analyst, cum Software Engineer, Assistant Administrative Officer, HR and Administration, Account Assistant, Assistant HR, Research, Grants and Project Officer, Assistant Administrative Officer, Students and Academic Affairs, Assistant Electrical Engineer, Library Assistant and more. IGIDR is committed to diversity and encourages applications from SC, ST, OBC, EWS and PWPD. You will enjoy a competitive salary as per the 7th Pay Commission and a vibrant research environment. Applications are open online till 8th June 2026. For full details on eligibility, pay scales and the application process, kindly visit www.igidr.ac.in. The Bhakra Bias Management Board, a major statutory organization under the Ministry of Power, Government of India, BBMB, is looking for experienced professionals for two key leadership roles, Member Irrigation and Member Power. If you've got expertise in irrigation management or power systems, this could be your opportunity to make an impact at the national level. The vacancy circulars, eligibility criteria and application format is available on the website. Applications must be addressed to the Section Officer, BBMB, Ministry of Power, Room Number 26, Shram Shakti Bhavan, Rafi Mark, New Delhi 11001, and should reach by 3rd June 2026. For details, do check up the website, that is at www.powermin.nic.in. The Union Public Service Commission, UPSC, is inviting online applications for direct recruitment to a wide range of posts across prestigious ministries and departments. Whether you're an engineer, scientist, academic, or have expertise in administration or technical fields, there is something for you. Some of the top vacancies include Airworthiness Officer in the Directorate General of Civil Aviation, Deputy Controller of Explosives at the Petroleum and Explosives Safety Organization, Managers in Mail Motor Service, Junior Technical Officers, Scientists in the Indian Meteorological Department, Deputy Superintending Archaeological Engineer, Associate Professors, Lecturers and many more. All posts come with attractive pay scales as per the 7th CPC and reserved seats for various categories including persons with benchmark disabilities. The application window is open till 12th June 2026. For details, kindly refer to the website, that is at https://upsconline.nic.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख मिनी रत्न उद्यम है जो उपयुक्त डोमेन विशेषज्ञता वाले 17 युवा पेशेवरों से संविदात्मक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनका विवरण इस प्रकार है। पद का नाम YP सॉफ्टवेयर और वेब विकास, पद संख्या 2 YP डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्रबंधन 2 पद, YP बाजार और आर्थिक विश्लेषण 2 पद, YP डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स 1 पद, YP कंपनी सचिव 1 पद, YP सामग्री प्रबंधन, YP मार्केट रिसर्च, YP सिविल इंजीनियर, YP इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1-1 पद तथा YP MSME बिजनेस आउटरीच 2 पद, YP वेंचर इक्विटी फंड के वरिष्ठ विश्लेषक 2 पद, और YP वेंचर कैपिटल फंड के लिए IT विशेषज्ञ एक पद। नौकरी के लिए विस्तृत विवरण, नियम, शर्तों और आवेदन पत्र के लिए देखिए NSIC की वेबसाइट www.nsic.co.in। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख रहेगी 8 जून 2026। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विभागों के नाम हैं BBA, इस विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, वाणिज्य विभाग में 3 पद उपलब्ध हैं, साइबर सुरक्षा विभाग में 2, अर्थशास्त्र विभाग में 3, अंग्रेजी विभाग में 3, इतिहास विभाग में 3, उड़िया तथा राजनीति विज्ञान में 3-3 पद उपलब्ध हैं। सहायक प्रोफेसर के लिए आवश्यक योग्यता और वेतनमान तथा अन्य शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर प्रोफेसर के नियमित पदों को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। प्रोफेसर पद के लिए विभाग हैं BBA, वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, उड़िया, राजनीति विज्ञान। इन सभी विभागों में 1-1 पद उपलब्ध है। आरक्षण, योग्यता, वेतनमान तथा अन्य नियम और शर्तों के लिए देखिए ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर की वेबसाइट www.osou.ac.in। आवेदन 22 जून 2026 तक पहुंच जाने चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में प्रबंधक वित्त एवं लेखा के 2 पद उपलब्ध हैं। दोनों ही पद अनारक्षित हैं। योग्यता है भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान अथवा भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान के एसोसिएटेड सदस्य आवेदन कर सकते हैं। अनुभव वित्त एवं लेखांकन में न्यूनतम 8 वर्ष का कार्योत्तर योग्यता अनुभव होना चाहिए। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग की वेबसाइट www.iimshillong.ac.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। योगः कर्मसु कौशलम्। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का ये प्रसिद्ध श्लोक हमें बताता है कि योग क्या है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन के संघर्षों और कर्मों के बीच समता यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है, यानी कर्मों की कुशलता ही योग है। कुशलता स्वास्थ्य में, विचारों में, व्यवहार में, और यही जो कुशलता और श्रेष्ठता है, यही होती है हमारे जीवन की श्रेष्ठता। और आधे घंटे के इस कार्यक्रम में डेटलाइन सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि योग महोत्सव से पहले अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं 21 जून को इस भव्य आयोजन के लिए। इस पर हम और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगले आधे घंटे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको देंगे और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन।

0: आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: हेलो जागृति, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इनटू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। आई एम योर होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को होस्ट जागृति शर्मा। वेल लिसनर्स, द 2026 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर and this World Cup firstly will have a massive total of 104 matches. Secondly, this World Cup introduces the 48 team format, creating a new round of 32. And lastly, this World Cup will be hosted by three nations, Canada, Mexico and the United States. And Jagriti, the 2026 FIFA World Cup will see the historic final appearances of legends like Argentina's Lionel Messi and Portugal's Cristiano Ronaldo. So this is an event we are all eagerly waiting for. And also today happens to be the birthday of the naturally talented English midfielder named Garza. Yes, it's none other than Paul Gascoigne. We will talk about him later in a program, but first we begin with the news headlines at this hour.
0: जी, सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस सिटीजन्स टू टेक प्रिकॉशंस अमिड राइजिंग टेम्परेचर्स। आईएमडी प्रेडिक्ट सीवियर हीट वेव कंडीशंस ओवर हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड विदर्भ।
0: भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की।
1: सीबीआई अरेस्ट टू एक्यूज नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन पेपर लीक केस।
0: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया।
1: And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in the eliminator match in Chandigarh this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Yoga Mahotsav, 25-day countdown to the International Day of Yoga 2026. Well, Jagriti, Yoga Mahotsav 25-day countdown to International Day of Yoga 2026 commenced this morning under the aegis of Morarji Desai National Institute of Yoga under Ministry of Ayush at the Western Group of Temples in Khajuraho, Chhatarpur, Madhya Pradesh, renowned worldwide for its magnificent temple architecture and serene surroundings. Khajuraho provides a fitting backdrop for Yoga Mahotsav 2026. The event highlights the connection between India's ancient traditions and holistic wellness, while further strengthening the momentum towards International Day of Yoga 2026.
0: बिल्कुल, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का एक अनमोल उपहार है इस दुनिया के लिए, जिसमें दुनिया को ये दिखाया गया है कि एक संतुलित, समग्र और स्वस्थ जीवन शैली हम किस तरह से अपना सकते हैं। व्यस्ततम जीवन शैली से जुड़ी जो चुनौतियों का ये दौर है, इसमें योग एक प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित समाधान के रूप में उभरा है। और 25 दिनों की ये उल्टी गिनती हर साल एक महत्वपूर्ण आउटरीच प्रोग्राम के रूप में मनाई जाती है। इसका उद्देश्य पूरे देश में योग प्रदर्शन अभियानों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाना है और जन भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहित करना है। योग महोत्सव 2026 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की राष्ट्रव्यापी तैयारियों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये पूरे देश में योग की पहुंच का विस्तार करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जागरूकता को और सुदृढ़ करने, व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 100 संस्थानों के सहयोग से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उल्टी गिनती अभियान का संचालन कर रहा है।
1: Yes, Jagriti, and the theme of the International Day of Yoga 2026 to be observed on the 21st of next month will be Yoga for Healthy Aging. And Union Minister of State for Ayush, Mr. Pratap Rao Jadhav, announced this while attending the Yoga Mahotsav in Khajuraho today. The minister emphasized that yoga represents India's ancient wisdom and plays a vital role in preventive health care and balanced living. He added that to remain healthy and fit at an old age, it is imperative to practice yoga on a regular basis. The minister also noted that yoga, an integral part of India's

0: Cultural and spiritual heritage has evolved into a global movement for holistic health and wellness following the United Nations adoption of the International Day of Yoga in 2014 after the initiative of Prime Minister Sri Narendra Modi.
1: बिल्कुल. और उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है जनभागीदारी के माध्यम से योग को हर स्कूल, दफ्तर, गांव और समुदाय तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है. और उन्होंने स्वास्थ्य की देखभाल के रूप में कहा कि योग और आयुष आहार ऐसी पहल संतुलित पोषण, अनुशासित जीवन शैली और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती हैं. और आपको बता दें कि इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव यानी कि योग दिवस का जो समारोह होगा उसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जाएगा. और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. 25 दिन अभी बचे हुए हैं और इसके लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं. योग का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जिसमें कि छोटे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक को ध्यान में रखा जा रहा है. और यस, योग न केवल रोगों के निवारण के लिए है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक जो विकार हैं उनसे दूर रहने के लिए भी इतना अनुपम उपहार है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए हर जगह सुलभ है. तो इसीलिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है.
0: एब्सोल्युटली जागृति, आई एम श्योर इट विल बी एन मच अवेटेड इवेंट एंड दैट वी विल लुक फॉरवर्ड टू. एंड ऑन द ओकेजन द मिनिस्टर रीलॉन्च द योगा संगम पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथन पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड योगा स्पेसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. यू ऑल्सो अनवेल्ड द न्यूली डिजाइंड योगा टी शर्ट प्रमोटिंग द मैसेज ऑफ योगा health and wellness and informed that over 2 lakh individuals will participate in the 100-day free yoga training program as Yoga Mitras.
1: और जैसे जैसे पूरे देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, आयुष मंत्रालय ने इस आयोजन से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक संसाधन के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हैंडबुक 2026 जारी की है. आयोजकों, संस्थानों, योग साधकों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक समूहों की सहायता से तैयार की गई ये बहुभाषी हैंडबुक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कॉमन योग प्रोटोकॉल, मंत्रालय की विभिन्न पहलों और जनभागीदारी के अवसरों से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को एक ही सुलभ संदर्भ दस्तावेज में समेटे हुए हैं. यानी कि जो ये हैंडबुक है इसके अंदर आपको योग से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट मिलेंगे, आपको जो मंत्रालय अपने इनिशिएटिव्स ले रहा है वो सभी इसमें मिलेंगे. और योग का जो कॉमन प्रोटोकॉल तैयार किया गया है या आपके लिए जितने भी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो सभी आपको इस हैंडबुक के अंदर मिल जाएंगी. और अभिषेक, योग दरअसल लोग 21 जून जब आता है तो तैयारियां करते हैं, कई बार 100 डेज का या 25 डेज जैसे आज से हम शुरुआत कर रहे हैं. तो योग कोई लिमिटेड पीरियड के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज नहीं है, इट्स जस्ट नॉट अ प्रैक्टिस. योगा इज अ लाइफ स्टाइल, क्योंकि योग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. योग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना वो योग से जुड़ेंगे उतना वो रोगों से दूर रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे. और आजकल जो तरह तरह के मानसिक विकार हैं उनसे भी वो दूर रहेंगे.
0: एब्सोल्युटली. सो प्रैक्टिस योगा टुडे इफ योर हेल्थ परमिट्स. एंड दिस हैंडबुक दैट जागृति वाज मेंशनिंग, द हैंडबुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा since its adoption by the United Nations in 2014 and outlines the major initiatives planned for IDY 2026. It includes the details of the ministry's signature programs such as Yoga Sangam, Harit Yoga, Yoga Samavesh, Yoga Park and Yoga Unplugged, along with the scheduled countdown activities leading up to 21 June 2026. So we are eagerly looking forward to this event.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि कुछ खास क्या है उनके पास. और अभी हम बात कर रहे थे अभिषेक योग के बारे में ही, तो चलते हैं पहले.
0: यस, एंड कीपिंग विद एंड कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी ऑफ योगा जागृति, द एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो टर्न्ड इनटू अ जायंट योगा ग्राउंड टुडे एज थाउजेंड्स गैदर्ड टू मार्क अ स्पेशल काउंटडाउन टू इंटरनेशनल योगा डे. वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट.

फिल्म अभिनेत्री आशा सचदेव का आज जन्मदिन है। उन्होंने 1970 से 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों में खूब नाम कमाया। उनका असली नाम था नफीसा सुल्तान और आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से की। उनकी फिल्म हरफन मौला में उनके अभिनय को सराहा गया। आइए चलते चलते उनके गीत का ये बोल सुनाते जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से

0: अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स से मुकाबला करेगी। वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved continuation of the scheme for assistance in ration transport and handling income with automation in PDS, Sarthak PDS, as an umbrella scheme in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, support fair price shops and help in modernization of the public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयर हाउसेज इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?

आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू हो चुका है कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। जी हाँ, गाते गुनगुनाते बस ये सफर चलता रहे, ये क्या दर्शाता है, क्या दिखलाता है कि सफर अपने आप में वो ट्रैवल, वो जिंदगी की डगर जीना ज्यादा जरूरी है। कई बार हम इतना ज्यादा इस आस में होते हैं हम कहीं पहुंचेंगे तो खुश होंगे, कुछ मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, इसके पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन जिंदगी की असली खुशी छोटे छोटे पलों में है, है ना। आपके साथ गाती गुनगुनाते में आज हम हैं रूमी मलिक, स्वागत है।

गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे। अच्छा, ऐसा हमेशा होता था हमारे साथ तो, कि हमें जो फिल्मी गाने हैं वो बड़ी जल्दी याद हो जाते थे, लेकिन हमें कभी भी जो है किताबों की चीजें या रटी हुई चीजें कभी भी याद नहीं होती थी। आपके साथ ऐसा होता था कभी? मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, पूरे के पूरा मुखड़ा अंतरा सब आता है, लेकिन किताबों को, फिजिक्स केमिस्ट्री, और मुझे तो फिजिक्स इतनी ज्यादा मुश्किल लगती थी, बब्बा रे। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि आजकल जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, पता है उसे पेडागोजी कहते हैं ना, हाउ टू टीच, इतने ज्यादा कमाल के चेंजेस आ गए हैं, टीचर्स इतने यूनिक तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है उसको लर्न भी कर रहे हैं, राइम में भी हो रहा है, सीडीज भी हो रही हैं, सोशल मीडिया से, टेक्नोलॉजी से इतनी ज्यादा कमाल की मदद मिलती है अब तो पढ़ने पढ़ाने में, है ना। नहीं तो किताबें बड़ी बोरिंग सी लगती थी। अभी भी बहुत सारे लोग डर जाते हैं किताबों को नाम सुन के, गाने सुन लेंगे पर किताबें, अरे रुको, तुम्हें किताबों पर ही गाना सुनाती हूँ।

जो दोस्त अभी अभी जुड़े हैं आपको बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz कार्यक्रम है गाते गुनगुनाते। दोस्त, जो 21वीं सदी का अभिशाप कहा गया है, ये जो बीमारी कही गई है, जो सबसे ज्यादा जिससे लोग ग्रस्त होंगे, वो पता है क्या है? वो है तनाव या स्ट्रेस। यस जी हाँ, ये जितनी भी बीमारियां आजकल लगती है ना, आप सुनते हैं जिसमें उच्च रक्तचाप या हाई बीपी आता है या हृदय रोग आते हैं या बड़ी सारी जितनी भी बीमारियां आती हैं, उसका मूल कारण होता है तनाव, स्ट्रेस। हाँ जी, और तनाव दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनों का साथ होना चाहिए। अपनों का साथ कैसे होना चाहिए भाई? तब हो सकता है जब आप लोगों को पसंद करने वाले बनो। अब हर कोई आपके जैसा नहीं बन सकता। अगर आप हर एक में नुक्स निकालोगे तो फिर आप अकेले रह जाओगे। तो ये जो अकेलापन है ना, ये जो है क्या कहा जाए, शहरी जीवन का ये अभिशाप है। और आजकल जो फोन से जो चिपक जाती है ना, तो ऐसी ऐसी डी एडिक्शन सेंटर्स भी अब बने हैं जो ये हटाते हैं। ऐसी ऐसी रिट्रीट्स हैं मित्रों, योग की, ध्यान की, प्राणायाम की, जहां पूरे पूरे दिन आपसे फोन ले लिया जाता है। हाँ जी, कई साल पहले मैं गई थी विपश्यना ध्यान के लिए, 12 दिन तक हमारा फोन उन्होंने लेके अपने लॉकर में रख दिया। हाय हाय, क्या थे वो 12 दिन। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप अकेले रहें, लोगों के बीच रहिए और इसलिए अपनी पीपल स्किल्स पे काम कीजिए। उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है बताइए? गाना गाना नन्ना, खाना खाना नन्ना, मुस्कुराना।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
6: हाँ।

0: रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते और एक से एक रोमानी गाने मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। बिल्कुल शाम के वक्त लगता है ना, जब पूरा दिन हम समेट रहे होते हैं, दिन भी अपने आप को समेट रहा होता है, सूरज महाराज भी जाने की तैयारी में होते हैं, हम लोग भी अपना बैग लगा रहे होते हैं, पर्स लगा रहे होते हैं ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से वापस आने के लिए, है ना। तो कौन सा सुनेंगे गाना आज बताएं। देखिए गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, जितनी भी हिदायत दी जाए वो अच्छा ही है कि जरूर सिर पर स्कार्फ, दुपट्टा या टोपी, किसी भी तरह से आप सिर को ढक के जरूर निकले, है ना। बल्कि कुछ लोग तो ठंडा रुमाल रखते हैं सर पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। लू जैसी कंडीशन हो रही है ना, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। पानी की बोतल जरूर रखें और बड़ी पानी की बोतल रखें। आज मैंने छोटी पानी की बोतल गलती से रख ली, ओहो मैं जितनी परेशान हूं मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी, मछली का एक नाम रूमी भी है। सचमुच में बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो फिर गर्मी में भी भाई बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उन सभी परेशानियों से, बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें, है ना। और कोशिश करें कम बात करें, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जब भी बात करते हैं तो गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठनक जाते हैं माथे लोगों के। हाँ सचमुच में पिछले दो तीन बारी से देख रही हूँ ऐसा अलग अलग लोगों के पीछे हो रहा है। आप कहते कुछ है, कोई समझता है कुछ है, कोई किसी के आजकल सुनना ही नहीं चाहता है ना। लेकिन ये गीत हम सुनना चाहते हैं, इसमें एक कमाल की बीमारी का वर्णन है। हाँ जी, उसको कहते हैं क्या, लवेरिया।

गाते गुनगुनाते ये सफर चलता रहे। जिंदगी में हर कोई क्या चाहता है, बेशुमार मोहब्बत। और क्या आप क्या सोच रहे थे मैं क्या बोलूंगी, बेशुमार दौलत? अरे मोहब्बत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती सचमुच में। बहुत ज्यादा दौलत कमा लेने के बाद ऐसा ख्याल आता है लेकिन ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। तो कैसे प्यार करें? अपने आप को बिल्कुल वैसा दिखाओ जैसे आप हो, सहज हो जाओ बिल्कुल। इफ यू वॉन्ट लव, बी लव योर सेल्फ। बिल्कुल सहज हो जाओ, फिर देखो किस तरह से वो सेम वाइब्स आप अट्रैक्ट करोगे। आहा, और बहुत दिनों बाद ये गीत। इस गीत में कौन थे? इस गीत में थे सलमान के जो सलमान की जो बहन है अलवीरा, उनके जो पति हैं, देखो नाम नहीं याद आ रहा भाई, और करिश्मा कपूर बाइक पे चला रहे थे, है ना, बाइक चला रहे थे इस गीत में। और करिश्मा कपूर बहुत डर रही थी कि कहीं गिरा ना दे, इनको आ नहीं रहा। पर किसी तरह से शूटिंग हुई, वो शूटिंग में भी बड़ा ही मजा था। अतुल अग्निहोत्री ना नीचे नीचे देख के गा रहे, दिल दिल दिल मैं तेरे

यार मैं खोया, मैं सारी रात न सोया, मैं क्या करूं। और वाकई हीरोइन की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था, बस वो देख रहे थे नीचे रास्ता और मोटर बाइक, और हम देख रहे थे खूबसूरत गाना हीरो हीरोइन को। बड़ा सुंदर गीत है भाई, सुनो, आतिश फिल्म से है। हाँ नहीं तो आप सुन रहे हो गाते गुनगुनाते रूमी मलिक के साथ।

गाते गुनगुनाते का सफर काश यूं ही चलता रहे, पर क्या करें, आ चुके हैं कार्यक्रम को हमें तो कहना अच्छा भी नहीं लगता समापन पे, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह होता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, लेकिन एक उम्र अच्छी तरह जी ले, है ना। वो कहते हैं ना, चार दिन की जिंदगानी है, लेकिन अगर अच्छी तरह से जी है तो चार दिन भी बहुत होते हैं यारो, है ना। जरा पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कहते हैं ना आसमान में भी सुराग हो सकता है। तो हिम्मत मेहनत जरूर करनी है, हिम्मत नहीं हारनी। बल्कि जाते जाते एक बात कहूंगी कि आपने अभी तक हार नहीं मानी, ये भी तो जीत ही है। रूमी मलिक को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून

महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में IPL क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 6:11 और 14 सेकंड। आप हैं सदाबहार गीत में रूपा के साथ। जी हाँ, कुछ फिल्मी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। कहाँ पर? आपके ही पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो चलिए सुनते हैं पहला सदाबहार नगमा धरती कहे पुकार के फिल्म से, मुकेश साहब और लता जी की आवाज में।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत रूपा के साथ। तो चलिए अगला गीत शामिल कर लेते हैं जल्दी से। ये है फिल्म इशारा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी साहब के स्वर में।

इसी के साथ विदा लेती है रूपा, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है इस चैनल पर। जी हाँ, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले संस्कृत में समाचार, और फिर 6:30 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा कार्यक्रम। रूपा को विदा दीजिए, नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं पञ्चशताधिक पञ्चविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या अद्य षोडश वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरन्तरतायै त्रिंशदधिक पञ्चशतोत्तर पञ्चविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः

0: भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिम मेधा चालित वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पंजीकरण मंच अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मंच वर्तते। एवं च सक्षम इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या राज्यांतर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ़ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदात्री सूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50-उत्तर-21तमः 24-300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्। यासु गतवर्षे जूनमासे निर्वाचनायोगेन बिहारराज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय सन्देशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वानेतेषु कष्टकर दिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉ मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्रभेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाह वर्तते यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्। यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः, अंकीय संगणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः, नवोन्मेषेण, परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य, अधिक सशक्तस्य, पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। श्रोताओं, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: गुड इवनिंग।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर आइए उससे पहले सुने सुर्खियां।
0: Thank you, Prachi and Siddharth. Once again, a warm welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end in negative zone. Sensex drops over 100 points. Nifty settles at 23,907. Major Asian stock indices end mixed. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक गिरा। निफ्टी 23,907 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में रहा मिश्रित रुझान और वैश्विक कच्चे तेल के दाम घटे।

0: घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 75,868 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज के उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 7 अंक फिसलकर 23,907 पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में बढ़त के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई, क्योंकि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण निवेशक सतर्क रहे। हालांकि विस्तृत शेयर बाजार में भी तेजी रही। मिडकैप 100 सूचकांक में लगभग आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
1: The BSE Sensex dropped 142 points to close at 75,868. The NSE Nifty ended on a flat note, marginally down by 7 points to settle at 23,907 after a choppy trade today. Benchmark domestic equity indices drifted lower after rising in early trade as investors remained cautious due to geopolitical uncertainties. However, the broader market at the National Stock Exchange extended its upward trend. The mid-cap 100 index advanced over 0.4%, while the small-cap 100 index rose over 0.1%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में वृद्धि हुई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में पावरग्रिड और इटर्नल में लगभग 2.5% और अधिक तथा एनटीपीसी में 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में एचडीएफसी बैंक 2.6% से अधिक, इन्फोसिस 0.7% और आईटीसी के शेयर में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
1: In sectoral indices at the BSE, 16 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, power surged almost 3.3%, capital goods soared 3.2%, and utilities rose 2.4%. Conversely, top 10 banks plunged 0.9%, private banks shed over 0.8%, and financial services fell over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,275 companies advanced, 1,945 declined and 174 remained unchanged.
0: श्रोताओं, भारतीय शेयर बाजार बकरीद के उपलक्ष्य में कल बंद रहेंगे। इस बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अनुसार कमोडिटी सेगमेंट में सुबह का कारोबार बंद रहेगा, हालांकि शाम 5 बजे से कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। आइए अब रुख करते हैं रुपए की चाल की तरफ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले मामूली रूप से कमजोर होकर 95.70 रूपये पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 99.13 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, आज जो बाजार में हमने एक गिरावट देखी है, उसमें प्रमुख कारणों में से एक कारण है कि भू राजनीतिक अनिश्चितता। हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी कहा कि इट कुड टेक अ फ्यू डेज टू नेगोशिएट अ डील। सिद्धार्थ,
2: नहीं देखिए, अब पिछले मुझे लगता है तकरीबन अब 90 दिन जो है हो रहे हैं, जो लड़ाई शुरू हुई थी अमेरिका और इसराइल एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान। लेकिन जब जब हम ये सुनते हैं कि अब जो है कोई ना कोई समझौते के करीब है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, दोनों तरफ से कोई ना कोई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि जो है जो समझौता है वो फाइनली हो नहीं पाता, और शायद बाजार पे भी उसी का इम्पैक्ट दिख रहा है। आपको, आपने मार्को रूबियो साहब की बात की, उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा उससे पहले ले जाऊं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद की दैट वी आर नाउ वेरी क्लोज टू अ डील एंड वी शुड बी अनाउंसिंग इट वेरी सून, आपने अगले दिन ही देखा था बाजार में तेजी थी, तकरीबन 1,000 पॉइंट्स की तेजी जो है बाजार में दिखी थी। तो बाजार किसी न किसी एकदम एक जो एक अभी जो दायरे में या आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे आज बंद हुआ, तो वो शायद बेसिकली वो इट इज लुकिंग फॉर ए डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन शायद आएगा कंक्लूसिव जब तक ये कंक्लूड नहीं होता है किस तरफ ये जो लड़ाई जो शुरू हुई थी और जो उसके खत्म होने का जो एक इंतजार मुझे लगता है बाजार को, उसी के बाद एक डायरेक्शन मिलेगा और उसी की वजह से हम देख रहे हैं बाजार में इस तरह का जो एक माहौल बना हुआ है।
0: सिद्धार्थ, एफआईआई की लगातार निकासी को लेकर के कई लोगों के मन में जो श्रोता हमें सुनते हैं गौरा, वो भी ये बार बार ये सवाल लेकर के आते हैं कि इतनी निकासी हो रही है, क्या होगा, किस तरीके से मार्केट स्टेबल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक और मत मैं देख पाती हूं कि अगर एफआईआई की निकासी हो रही है तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो बाजार है वो उतना प्रॉफिट दे रहा है तो प्रॉफिट बना करके लेकर के जा रहे हैं, तो ये भी एक पक्ष हो सकता है।
2: नहीं, बहुत आपने जो बात कही वो भी सही है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई भी इन्वेस्टर बाजार में क्यों आता है
0: जी,
2: उसका बड़ा सीधा जो मकसद क्या होता है वो मतलब मुनाफा कमाने आता है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय से कर रहे होते हैं इन्वेस्टर, तो शायद उनको इस समय पे लगता है कि ठीक है उनको मुनाफा कमाना चाहिए और वो शायद इस समय भारतीय बाजारों में उतनी वैल्यू नहीं देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है जो हमें प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो बाहर जा रहे हैं। और शायद मेरे को जो लगता है एक कारण यही है कि शायद दूसरी बाजारों में उनको ज्यादा संभावना इस समय दिख रही है, हिंदुस्तान की बाजार में उस तरह की संभावना नहीं। तो हम तो एक ओपन इकोनॉमी है, आप आइए, अगर आपको लगता है इस समय इन्वेस्ट करने का माहौल माकूल है आप करिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी हो रहा है आप उस तरह से उसको निकाल के ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी गुड साइन, स्पेशली ऐसे समय पे जब हमारे इकोनॉमी पे पश्चिम जो वेस्ट एशिया की क्राइसिस है, हमारे ऊपर भी प्रेशर है, हमारी अपनी करेंसी पे प्रेशर है, हमारे फॉरेक्स पे। और जो उसके साथ साथ एक बात और कहूंगा, जो आपने कहा कि जो हमारे घरेलू निवेशक, तो शायद जो पहले हम देखते थे जब भी एफआईआई की निकासी होती थी एक बाजार में भूचाल सा आ जाता था, लेकिन आप देखेंगे पिछले दो साल से 2025-26 और ये तीसरा लगातार साल है जब एफआईआई की निकासी हो रही है और बड़े पैमाने पे वो जो है एफआईआई ने इंडियन मार्केट से पैसा निकाला है, एग्जिट किया है और अभी भी एग्जिट मोड पे ही हैं वो। तो लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली आप देखेंगे इस महीने का मैं आंकड़ा देख रहा था, ऑलमोस्ट एफआईआई की जो निकासी है उसके ऑलमोस्ट डबल जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उसका डबल जो है हाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की बाजार की मेच्योरिटी को भी दर्शाता है कि आपके जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से उनको अपनी अर्थव्यवस्था अपने अर्थव्यवस्था के जो फ्यूचर है उस पर पूरा भरोसा है। तो और इसको बहुत नेगेटिव वे में भी शायद कहीं पोर्ट्रे किया जाता है कि एफआईआई जा रहे हैं बाहर, मुझे लगता है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है तो इसलिए वो जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली चले गए और जो है अब कभी लौट के ही नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है ये कई बार जो है ये फिनोमेना कुछ पीरियड के लिए होता है और फिर मुझे लगता है आफ्टर दिस वेस्ट एशिया थिंग सेटल्स डाउन स्पेशली, और आप देखेंगे पिछले दो साल से जब से ट्रंप साहब आए हैं उन्होंने भी पूरी दुनिया को में उथल पुथल करके रखा हुआ है, तो वो भी एक कारण है, तो उसकी वजह से भी पीपल आर नो ट्राइंग टू टेक देयर मनी टू बेटर ऑप्शन, यूजिंग बेटर ऑप्शंस।
1: Right. Siddharth, you know, there was a time when the Russia-Ukraine conflict would have an impact on the market. And I think over a period of time, it was built in. And now it's in the background. And I think happenings there, whether it's an actual attack or an actual, a burst of activity, I think our markets across the world are really not really responding to that. Here we are seeing that more than activity in the West Asia crisis, it is more rhetoric. It's a conversation. It's a sentence that comes out. It's a stance. So this stance taking and this positioning, and it really is volatile because, we really don't know in terms of a direction. If you see, is the trend going towards peace talks? Is it varying from there? This uncertainty somewhere, do you think a certain kind of a fatigue will be settling into the market to say we'll respond to it, we may not react to it with the same volatility that we used to do?
2: No, what in terms of fatigue, I would say it's already set in because you don't see those kind of sharp movements, especially downward movement. And obviously, in any time, any good news which comes in obviously pushes our markets.
1: That means the market is actually wanting to move up.
2: Yeah.
1: It's saying, give me an opportunity and I'm going to take
2: just,
1: and ride
2: that. Yeah, I think it's just waiting for this to settle down or take a direction. And in terms of, so basically, and our markets have also matured to that extent. And why there is still market is still not discounting West Asia? Obviously, because it has had huge repercussions for us. Because obviously the disruption through the Strait of Hormuz, obviously where 40% of our own world energy supplies go through that channel. So, and the same

0: When we have been affected, crude oil prices have gone up sharply. I think today they have fallen below 100.
1: Right.
0: So, which is also indicating, which is a positive thing, especially for us. So, I think the moment this dust, this war settles down, I think we should see a huge pent-up positivity in the Indian markets.
1: Right. Talking of better opportunities, and earlier Prajit asked you the questions about FIIs leaving. In terms of the Indian investor, and a lot of advice is also being given that people who are investing primarily or only in the Indian market should also look at diversifying, particularly even if it's through some mutual funds or certain avenues which give you access to global markets. What are your views on this?
0: I would say any diversification is always welcome, most welcome, and if you're able to invest in markets like, as you said, U.S. markets, or for that matter, now currently the South Korean market, Taiwan, they have huge returns for investors, and I think our own depositories and mutual funds are already offering those kind of products, and people are investing it. Initial part, I think when you do your initial process, it takes a little time.
1: Right.
0: But once you get into it, I think
1: And it's
0: then
1: the way of the future.
0: it's a future. Plus, why not only in the Indian markets? If you want to be in this stock market, obviously diversify your portfolio, and there are avenues for, especially for fields like artificial intelligence. I think the avenues or the opportunities is definitely lie more outside of India.
1: And there also you'll say don't go for short term or trading, go in for the longer haul.
0: Yeah, I think that mantra, especially because we our program, obviously we mostly focus more on retail investors. I think that should always be the play, especially these times also. I think if an investor is coming at this point in time, I would say obviously a lot of damage has happened to the world, to us also. We are not outliers. So I think come with a little longer horizon, 3 years, 5 years. But if you have that horizon, I'm sure you'll make very good money.
2: सिद्धार्थ, आपने समय की तो बात बता दी और कहा कि एक ठीक समय लेकर के आप निवेश करने की मानसिकता से बाजार में घुसिए, लेकिन क्योंकि आपने इससे पहले बताया कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो की, तो मैं चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में बताएं इस चीज को मेरे श्रोताओं को कि अगर अगर हमारे पास 500 रुपये बचते हैं महीने के अंतराल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए?
0: नहीं, आप चाहें तो उसको, जो हम हमेशा कहते हैं, आप डायरेक्ट कुछ उसमें से डायरेक्टली बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स में. आप चाहें तो सबसे आसान और सबसे जो सेफ तरीका है, आप किसी म्यूचुअल फंड या ETF ले लें, SIP कर लें. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ये सोच के करें कि ये आप लंबे अंतराल के लिए कर रहे हैं. थोड़ा आप चाहें तो उसमें से कुछ पार्ट कॉमोडिटी में भी, लोग आजकल गोल्ड सिल्वर को भी एज एन इन्वेस्ट अब शुरू किया है इंडिया में लोगों ने, और ट्रेंड बहुत तेजी से पकड़ रहा है, उसमें भी कर सकते हैं. तो इस तरह से, और एक लास्ट चीज जो बोलना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ पैसा ऐसे फॉर्म में भी होना चाहिए जो कभी आपको इमीडिएट जरूरत हो, तो वो कोई सेफर इंस्ट्रूमेंट हो. लोग आजकल बहुत अच्छा नहीं मानते, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह भी, थोड़ा एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर, सो दैट विच इफ यू थिंक यू नीड इट इमीडिएटली, यू कैन गेट इट. बिकॉज हो सकता है स्टॉक में आज आप इन्वेस्ट करें, थोड़ा इमीडिएटली थोड़े दिन उसमें आपको उतना फायदा ना दिखे, लॉस दिखे, तो एटलीस्ट दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट विच इज सेफ. तो कुछ पैसा आप अपने सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखें.
1: सो एक्चुअली यू नो इट्स अबाउट मेकिंग मनी, अ लॉट ऑफ इट इज अबाउट डिसिप्लिन.
0: या सेफ
1: सेफ
0: कीपिंग योर मनी
1: और गेटिंग योर डाइवर्सिफिकेशन, गेटिंग योर बकेट्स, एंड ऑल्सो अ डिसिप्लिन, अ रेगुलरिटी, नॉट अ ट्रिगर हैप्पी वे ऑफ सेइंग आई वांट टू गेट इन और मार्केट इज अप, नॉट reactive, and it's the discipline compounding in time which somewhere rewards you.
0: I think, and mostly what I've seen is people invest mostly when markets are going up. I would say this is the time, or there or long, I would say last 3 months, 4 months have been the
2: मैं
0: बिल्कुल
2: इसी पर आने वाली थी कि क्या ये यही सही समय, क्योंकि हमारे जो कॉलिंग प्रोग्राम्स आते हैं तो हमारे कुछ श्रोता जो हमें मतलब रेगुलरली हमारे जो श्रोता है रहे हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि देखिए मार्केट्स तो लगातार ही गिर रही हैं, तो इसमें हम इस मोमेंट पर पैसा लगाएं तो फिर जाते हैं नीचे, उससे नीचे लेवल पर पैसा लगाएं तो और गिर जाती है, तो ऐसे में एक मतलब एक रेस्टलेसनेस आती है, तो इसको किस तरीके से इससे उभरा जाए?
0: नहीं प्राची, एक बात और यहाँ पे बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप

0: हम कभी भी मार्केट को टाइम किसी ने नहीं किया और कभी कोई कर भी नहीं पाएगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट चढ़ रही है तो उस समय आप इन्वेस्ट ना करें, मार्केट गिर रही है तभी इन्वेस्ट करें। हाँ, ये जरूर है कि ये समय जब मार्केट गिर रही है, थोड़े वैल्यूएशंस अच्छे शेयर्स, अच्छे कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो भी आपको अच्छी वैल्यूज पे मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा इस समय आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट जब चल रही हो तब ना इन्वेस्ट करें, जब भी इन्वेस्ट करें अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उनका बढ़िया उन पे अपनी रिसर्च कर लें, उनका बैकग्राउंड चेक कर लें, उनके ऑर्डर बुक चेक करें, उनकी बैलेंस शीट चेक करें, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें। तो समय कोई भी आपको निश्चित ये कोई नहीं बता पाएगा कि इस समय करें, लेकिन मुझे लगता है जब भी करें समय हमेशा अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म करें।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, बाकी जो हमारे पास खबरें हैं उस पर विवेचना के लिए आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, मगर श्रोताओं उससे पहले आइए चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार सूचकांकों में मिश्रित रुझान रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.2% से अधिक फिसला और हांगकांग का हैंग सैंग लगभग 1.1% गिरा। वहीं दक्षिण कोरिया के कॉस्पी ने अपनी बढ़त जारी रखते हुए 2.2% से ऊपर की छलांग लगाई, जबकि जापान का निकेई नई रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी बढ़त खोते हुए सपाट बंद हुआ। वहीं सिंगापुर का शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहा। प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों की अगर बात करें तो आज बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। फ्रांस का कैक 0.8%, जबकि जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए।
2: A quick look at the US markets. Among the major US stock indices, the S&P 500 and Nasdaq Composite rose to fresh all-time highs yesterday, led by technology shares. The Nasdaq Composite Index soared 1.2% to end at 26,656, and the S&P 500 surged 0.6% to settle at 7,519. Conversely, the Dow Jones Industrial Average slipped over 0.2% to close at 50,462. Siddharth, exactly what you were saying, and I think when we're reading out the way the markets have moved across Europe and other Asian markets and the US, I think diversification will somewhere give more stability to a person's portfolio. It's a new area, and as you said, it might have a little barrier to entry, but it is actually a way that we should explore as investors.
0: Yes, definitely, I would say.
1: सिद्धार्थ, हम अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं निकेई और कॉस्पी सूचकांकों को देखें तो पिछले कुछ दिनों से इनका एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, बल्कि अगर हम यूएस के बाजारों की ओर भी रुख करें तो एक अपवर्ड ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। क्या कारण है कि इतनी अनिश्चितता के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं?
0: नहीं, जो आपको अमेरिका के बाजारों में या निकी में या ताइवान कॉस्पी जो भी आपको इफोरिया दिखाई दे रहा है ये साउथ कोरियन मार्केट में, ये बेसिकली इसका सबका एक जो बेस है या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन कंपनीज के प्रति लोगों का जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है या लोगों का बहुत जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनियों में, तो लोगों की आशाएं बहुत ज्यादा जुड़ रही हैं और इन कंपनीज में बहुत ज्यादा अभी लोगों इनको निवेश के तौर पे भी बहुत मिल रहा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं तो अभी जो लेटेस्ट स्पेसएक्स का आईपीओ जो उन्होंने फाइलिंग की है, तो विच इज एक्सपेक्टेड कि अगर उसकी 1.75 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा वैल्यूएशन होती है, तो सऊदी अरामको का एक आईपीओ आया था 2019 में, तेल कंपनी है जो सऊदी अरेबिया की बड़ी, उसके बाद का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो बेसिकली ये जो इफोरिया, अगर आप जापान को देखेंगे, साउथ कोरिया को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी में, चिप मेकिंग, जो एआई से जुड़े जो भी वो हैं चीजें हैं, उसमें वो अग्रणी सबसे आगे हैं, फॉरमोस्ट हैं। तो और यूएस के पास ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, चीन के पास रिसोर्सेज हैं, तो ये सारा इफोरिया जो इन मार्केट्स में बेसिकली अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बेसिस पे है।
1: लौटेंगे आपके पास सिद्धार्थ एक बार फिर से। उससे पहले अन्य खबरों में, मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्य खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: Moving on to our next story, India and Canada have reaffirmed their shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030 and concluding negotiations for the Comprehensive Economic Partnership Agreement by the end of the year. On the second day of his three-day visit to Canada, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a series of high-level meetings with senior Canadian business leaders and institutional investors in Toronto. The meetings were aimed at deepening bilateral cooperation and promoting investments and technology partnerships across strategic sectors. During the visit, Mr. Goyal also met Canada's International Trade Minister Maninder Sidhu. Both sides discussed the growing complementarities between India and Canada and underscored the need for a more robust and predictable business ecosystem driven by stronger government-industry collaboration. A team from the United States of America, led by the chief negotiator, will visit India from the 1st to the 4th of the next month. The visit is focused on carrying forward the negotiations under the broader bilateral trade agreement on multiple areas, such as market access, non-tariff measures, and others. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit is proposed to finalize the details of the interim agreement between India and the USA. So that quickly, your comments on, so we're seeing a lot of international agreements, dignitaries and ministers going across, building agreement. And before that, sometime we had seen this huge tariffs being implemented and relationships changing. Do you think a new normal is settling in and countries are now negotiating with that background but saying, okay, let's move forward?
0: Yeah, I think the new normal, especially with our relationships with the United States, which had taken a hit after we were huge tariff was imposed on us. So I think that seems to be now, we seems to be close to an agreement, trade agreement, an interim one though. And I think the Commerce Secretary has also said that we should be done by July 24th or some deadline also he's given. So we are very positive on that. And besides that, for our own exports, we are looking at newer markets. We are trying to, you know, give more access. So I think Canada, visit of our Commerce Minister to Canada is a endeavor in that direction.
2: Right. And you also feel that, countries are now actually saying that collaboration is the only way forward, and let's not keep all our eggs in one basket. Let's form more relationships and let it be a more equal partnership across the world.
0: Absolutely, Gaurav. And the latest example of that is the meeting which took place between in our yesterday Quad nations, and where we have also done a agreement on critical minerals and artificial intelligence supply. How do we manage our supply chains between India, Japan, US? So I think on that collaboration bit is the move forward.
2: Right. Moving on to crude oil prices. Global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 2.6% down at $97 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 3.5% lower at $90.60 per barrel when reports last came in. So is this like a beginning of a particular pattern of prices actually going down, or this is a volatility that's a part of the volatility?
0: No, I think, Gaurav, this crude oil coming below 100 per barrel, definitely the markets are factoring in that we are close to the end of this war between US, Israel and Iran on the other side. So I think if we are able to see an agreement, I think the prices should fall very sharply also.
2: Right. So we are having all these increase in prices and all. Do you think that will come reflective in actual everyday prices also?
0: See, for now, obviously, our companies have been, our oil marketing companies have been absorbing these prices for a very, very long time. Almost 2.5 months, there was no price hike, though the crude oil prices have almost doubled in last 3 months. So despite that, the increases by our oil marketing companies is very, very modest.
2: Right. In the Indian bullion market, 24.

0: 4-carat gold was trading over 1.2% down at 1,56,300 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% lower at 2,65,320 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein June anubandh wala sona lagbhag 1.5% girkar 1,55,367 rupaye prati 10 gram par tha aur July anubandh wali chandi 2.3% ludhakkar 2,64,521 rupaye prati kilogram par karobar kar rahi thi. Siddharth, ek sankshipt tippani mein chahungi sone aur chandi ke bhav par.
2: Mujhe lagta hai sone chandi ke bhav abhi pichle jo kuch mahino se main kahunga range bound hai, to mujhe lagta hai 4,500 डॉलर पर आउंस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है उसी लेवल्स पे रहना चाहिए. थोड़ा बहुत जब लड़ाई की अनिश्चितता बढ़ती है तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ, हम लोग देखते हैं गोल्ड, बट मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर की प्राइजेज में.
1: क्या आप, क्योंकि ये सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल, मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि क्या आप मानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस गिर सकते हैं आने वाले समय में?
2: नहीं, मुझे ऐसा कोई कारण लगता नहीं कि बहुत ज्यादा मार्केट में गिरेगा. और जितने जब भी आप देखेंगे अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो उस लेवल पे खरीद जो है लोग बहुत तेजी से खरीदते
1: हाँ,
2: भी
1: हाँ, ये भी बात है. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे और गौरंग के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: आप दोनों को धन्यवाद.
0: थैंक यू सिद्धार्थ. वंस अगेन listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end in negative zone. Sensex drops over 100 points. Nifty settles at 23,907. Major Asian stock indices end mixed. And global crude oil prices decline. And that's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

0: सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Aswani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, will support fair price shops and help with modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते
1: हैं? The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is not a replacement of the existing PDS scheme. Home Minister Amit Shah hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. The Assam Legislative Assembly today adopted the Uniform Civil Code Bill, making Assam the first state in the Northeast and the third state in the country to adopt such a legislation. The bill, introduced during the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday, was passed by the House today on the concluding day of the session. Assam Parliamentary Affairs Minister Atul Bora tabled the bill on behalf of Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर। हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: लक्ष्मी जी। सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
2: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो फूड ग्रेन्स वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से, जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फूड ग्रेन्स, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है। वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे। इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा। और दूसरी इश्यू है जो डीलर्स का है, डीलर्स का जो रेम्यूनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो शॉप्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे। और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन जो है जो अडॉप्शन है उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंट वे और एफिशिएंसी बढ़ेगा।
1: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है।
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में

0: तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
2: तो इसके लिए जो रियल टाइम बेनिफिशियरी डेटाबेस है जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है वो जो राइटफुल बेनिफिशरीज ने वो वीड आउट हो जाएगा, उनको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और पोस्ट डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर ये खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
1: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
0: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी इसका यूज करके पीडीएस के बेनिफिशरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे, हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यह टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
2: देखिए, ये जो ग्रीवियंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को, हाँ उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है ज्यादातर, अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं। तो इस मिशन में अगर

0: लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
1: देखिए, चैलेंजेस ज्यादा तक जो है, रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है.
0: जी
1: सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है,

0: यहां से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, वो रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, या पता, यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स, कहाँ पे
1: बिल्कुल
0: दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का. और रूट ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पे होगा एआई एल्गोरिथम्स, जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो
1: जी
0: वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफ टेक है. राशन में कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में,
1: जी
0: क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है 1 महीने में. राशन कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हैं या आखिरी में भी उठा सकते हैं. कई बार त्योहार के
1: जी
0: टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते हैं. कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता, उसके वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता. तो टेक्नोलॉजी की वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं. दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड के वजह से वो टैम्पर कोई कर ही नहीं सकते.
1: राइट
0: जो जिस फेयर प्राइस शॉप को, जो राशन शॉप के लिए जाना है, वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोडेड कौन से राशन के दुकान में पहुंचा है, और वो ट्रैक भी कर सकते हैं. और रियल
1: जी
0: टाइम मॉनिटरिंग जो है ना, वेयर हाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते.
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना एनएफएसए के तहत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए. एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशन विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट.
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक पीडीएस की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक पीडीएस ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत ये इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आप राशन उठाना चाहिए, और उठाने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए. सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं,
1: जी
0: वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हो. इस तरह का प्रोविजन अभी है, विच इज गुड. बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक ही राशन होगा और कहीं पे भी वो ले सकते हैं.
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही, जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं बिल्कुल ना हो, वो और भी अच्छे से काम करें ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
0: हाँ, इस सरकार में इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं. और जहां तक मैंने पीडीएस इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है,
1: जी
0: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके, और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा
1: जी
0: और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए और बेनिफिशरीज को

0: टाइम से उनका राशन मिलेगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा,
1: जी
0: कि ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
1: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं।
0: सके
1: लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें, तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
0: देखिए, इसमें तो डीलर का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन्स देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में वो अब मन लगा के वो इम्प्लीमेंट करें। एंड
1: जी
0: दूसरा, जो स्टेट कॉस्ट इनकर्ड था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इन अ मच बेटर वे।
1: जी लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आसमान में डूबता हुआ सूरज, सूरज की लालिमा ने आकाश को अपनी लालिमा से घेर लिया है, अपनी चादर तान दी है। दूर कहीं परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। दिन भर की भाग दौड़, वो दफ्तर की फाइलें, वो रास्तों का शोर, और फिर अचानक सब कुछ थम सा जाता है जब आसमान अपना रंग बदलता है। जी हाँ, आसमान जब अपना रंग बदलता है तो समझो शाम हो गई है। शाम भी क्या चीज है ना, ये थके हुए लोगों को सुकून देती है और अकेले बैठे लोगों को यादें। किसी के लिए ये घर लौटने की जल्दी है तो किसी के लिए खुद से मिलने का इकलौता वक्त, और ये वक्त शाम के 7:26 पर आप हैं सांझ ढले में, और सांझ ढले का सफर है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां आज आपकी शाम को और भी बेहद खास बना रही हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो लीजिए जनाब, आपके लिए सब कुछ छोड़कर हम जल्दी से मुलाकात करने के लिए आ पहुंचे हैं आपके पास। तो आप भी अपने रेडियो के करीब आ जाइए और अपने दिल को तैयार कर लीजिए बहुत ही प्यारे मीठे से गाने के लिए। जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलता। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के

आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं अपने ही पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 7:35 और 37 सेकंड। तो जनाब, आज की शाम को किसी और के नाम करने से पहले जरा खुद के नाम करके देखिए। जी हाँ, किस तरह एक कप चाय पीजिए और थोड़ा सा मुस्कुराइए और कहिए शाम मुबारक।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हैं आप सांझ ढले के सफर पर, और इस सफर में आपके साथ हम सफर हूं मैं आप ही की दोस्त रूपा धवन, और आज के सांझ ढले की ये आखिरी प्रस्तुति आपके लिए।

इसी के साथ सांझ ढाले से विदा लेती है रूपा। आपसे कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 8:10 पर आपके लिए मधुरिमा लेकर फिर से हाजिर रहूंगी। नमस्कार।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के बजट में घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पारदर्शिता, जवाबदेही और तय समय सीमा के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। बैठक में मॉनसून की तैयारियों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जलभराव की समस्या को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय और पोताई की व्यवस्था, पौधरोपण अभियान, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा संबंधी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो मंडे और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का गंभीरता से पालन करने की अपील की, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने लोगों से भरपूर पानी पीने, शरीर को हाइड्रेटेड रखने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पशु पक्षियों का भी ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि घर, छत, बालकनी, दुकान और आसपास उनके लिए पानी तथा छांव की व्यवस्था जरूर करें। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार

0: ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और दो फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने आज शाहबाद डेयरी के सी ब्लॉक, सुनहरी चौक और लाला स्कूल रोड क्षेत्र में सड़क तथा नाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य मुख्यमंत्री विकास निधि के अंतर्गत किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: श्री सिंह ने बताया कि शाहबाद डेयरी क्षेत्र में लंबे समय से खराब सड़कों, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में कोई भी ऐसी ब्लॉक नहीं छोड़ा जाएगा जहां पीने के पानी की समस्या बनी रहे। श्री सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। श्री सिंह ने अधिकारियों को सड़क निर्माण की समय सीमा पहले से तय करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि कोई सड़क लंबे समय तक अधूरी या खुदी हुई पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4: वैसे तो इसी साल लगभग शाहबाद डेयरी का 90% काम पूरा हो जाएगा। दूसरा, भवाना से लेकर शाहबाद तक की नई ड्रेन, जिससे कि हमारे अभी गलियारों में नालियां भरी रहती है, नाले साफ नहीं होते क्योंकि बाहर पानी नहीं निकल पाता, तो बड़ा नाला, जिसके कारण से भविष्य के अंदर पूरे शाहबाद डेयरी के अंदर कभी भी नालों में पानी नहीं दिखाई देगा, ऐसी व्यवस्था भी। एक छोटा हॉस्पिटल बनाने की भी बात, लाल बिल्डिंग को इसी वर्ष खुलवाकर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी हम शुरू कर देंगे।
3: श्री सिंह ने जानकारी दी कि बवाना से शाहबाद डेयरी तक आदर्श ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। आजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि राजौरी गार्डन विधानसभा में लगभग 1,33,00,000 रूपये की लागत से अंबेडकर चौपाल का निर्माण कराया जायेगा, वहीं हरिजन चौपाल का काम 1,08,00,000 रूपये की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही लगभग 1,42,00,000 रूपये की लागत से एनडब्ल्यू चौक, खयाला स्थित शमशान घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और बेहतर जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई भी काम ये हमारा नहीं छूटेगा। ये ऐसा भवन होना चाहिए और यहाँ पे अपने कार्यक्रमों के अलावा भी आदमी सुस्ता सके, बैठ सके, बात कर सके, और जितने भी यहाँ पर भवन बनेंगे, चौपाल बनेगी, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, सारे एयर कंडीशन। क्या ये कि पानी कम आ रहा है, कहीं से भी लाना पड़े मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा।
0: श्री सिरसा ने कहा कि चौपालों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि खयाला गांव में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन, बड़ी सीवर लाइन और

0: सड़कों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन सड़कों और सर्विस लेन का भी पुनर्निर्माण कर रही है जिन पर पिछले 20 से 25 वर्षों में काम नहीं हुआ था।
1: जो सड़कें आज तक आपने बनती नहीं देखी थी, चाहे हनुमान मंदिर के सामने सूरज की लाइन डालनी हो या पश्चिम विहार की तरफ जो नाले की तरफ सड़क निकलती है, ये कभी बनी नहीं थी। हमने आकर पिछली बार भी उसके काम शुरू किए। अब गांव के अंदर सारे नाले की बड़ी सड़कें नाले डालने का, सारे गांव के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज डालने का काम चल रहा है और इसी तरह पीने की पानी और सीवेज की लाइनें डालने का काम चल रहा है। हमारे इलाके के अंदर जितनी चौपालें हैं और जितने कम्युनिटी सेंटर हैं सबको अपग्रेड करने का काम चल रहा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा, वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही ब्रिटानिया चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक किया जाएगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो रेल 10 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इससे पहले भी 8 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए थे, जिससे अब कुल 18 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 अतिरिक्त फेरे और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक 8 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। NCRTC ने कहा कि इससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम होगा और सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2,90,000 कार्ड वय वंदना योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
2: इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की नगद रहित स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार इसके तहत अब तक 46,900 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपचार में अब तक 86,22,00,000 रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा हुआ है। योजना के तहत राजधानी के 233 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिनमें 181 निजी और 52 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हीटवेव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोकनायक अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 14 विशेष बिस्तर और 70 बिस्तर का डिजास्टर वार्ड तैयार किया गया है। अस्पतालों में ORS, कूलिंग पैड और आपात सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
0: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज दक्षिणी जोन के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम की संयुक्त टीम ने PWD और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सड़कों तथा फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे, प्लेटफॉर्म और ठेलों को JCB मशीनों की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और पार्कों की दीवारों के आसपास किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर लगभग 9,58,000 रूपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 ग्राम वजन के 4 सोने के सिक्के भी बरामद किए। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों को उन्नत साइबर प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में किया गया। पुलिस के अनुसार इस साझेदारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, साइबर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को न्यू उस्मानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिस पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दिन के समय बादल छाए रहने की संभावना है, शाम और रात के समय हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। कल अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस योजना में 3 बड़े सुधारों की मंजूरी दी है।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित मामलों में राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित रखने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। विधेयक में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एक समान ढांचे में रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया।

है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। और खेलों में, न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट में एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। उधर म्यूनिक में आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

AIR @90। आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख

सूरज की रोशनी की तरह चांद की रोशनी भी हमारे दिलो दिमाग पर काफी असर डालती है। जी हाँ, और अगर चांदनी रात में जब हम घूमते हैं, टहलते हैं, तो शरीर में एक अलग ही शीतलता का प्रवाह होता है। सोने पर सुहागा तब होता है जब घूमने के साथ साथ संगीत के तराने भी गूंज रहे हों। तो आज की इस गर्मी वाली रात, जिसकी तासीर इतनी गर्म है, उसको चांद की रोशनी जैसा ठंडा एहसास दिलाने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम मधुरिमा। और मधुरिमा में जहां हम आज बातें करेंगे रात्रि के समय में गाने बजाने वाले रागों की, और ये खास बातें होंगी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही सुनेंगे रागों पर आधारित गीतों को। इस सफर पर आज आपके साथ हूं मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। अभी आपने सुना बाजार फिल्म का ये नगमा, जिसे हमने लिया था बाजार फिल्म से, और राग पर आधारित था, राग बागेश्री। स्वर थे तलत अजीज साहब और लता मंगेशकर जी का। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं जहां आरा फिल्म से, और ये राग केदार पर आधारित है। इसमें ताल दादरा का प्रयोग हुआ है और खूबसूरत और बेहतरीन संगीत दिया मदन मोहन साहब ने, और गीतकार राजेंद्र किशन जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं राग बसंत पर आधारित गीत। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसे बसंत ऋतु में गाया बजाया जाता है। इस राग में बसंत ऋतु के अलावा श्रृंगार रस और विरह रस की बंदिशें दिखाई देती हैं। वादी संवादी स्वर हैं सा और पा। फिर वही दिल लाया हूं फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए। 3 ताल में इसका प्रयोग किया गया और संगीतकार ओपी नैयर साहब, स्वर आशा जी और उषा मंगेशकर जी का।

राग हेमंत बहुत ही मधुर राग है और ये भी रात्रि के प्रहर में गाया जाता है। फिलहाल मधुरिमा का सफर यहीं तक, रूपा विदा लेती है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का दिल्ली एफएम गोल्ड।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स लाइंस पर। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। आईपीएल के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया। एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 27 पदकों के साथ भारत ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन किया। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप कल से वियतनाम के दानांग में, और भारत को मिली एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने न सिर्फ कई कीर्तिमान बनाए बल्कि पदकों पर भी निशाना साधा। म्यूनिख में आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
1: Oh, Isha, can we get one more? Just one more. Oh, nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लामा मिनचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैम्प दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लामा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया।
2: I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best.
0: अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यू चंडीगढ़, जहां आईपीएल का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से हार हो जाएगी। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 12 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 5 चौके के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल के एक ही सीजन में 59 छक्के का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने कल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की।
3: धर्मशाला में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत

0: हालांकि टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 25 गेंद में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने पड्डीकल को भी अपना शिकार बनाया। पड्डीकल ने 30 रन का अहम योगदान दिया। आरसीबी ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 93 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट झटके। 255 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में गुजरात की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम को 17 के स्कोर पर साई सुदर्शन के रूप में पहला झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन महज 14 रन पर हिट विकेट होकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 2 रन ही बना सके और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन जल्द ही जॉश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज ने 68 रन की साझेदारी करते हुए टाइटंस को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। राहुल ने 4 छक्कों के साथ 68 रन बनाए, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। गुजरात की पूरी टीम 3 गेंद शेष रहते 162 रन पर ही सिमट गई। आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रजत ने कहा कि हम शुरू से ही मुकाबले को आक्रामक होकर खेलना चाहते थे।
1: इट वाज अ सुपर गेम फॉर अस, द वे एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग विद द इंटेंट, सो आई थिंक दैट वाज देयर इन एवरी बैट्समैन, सो वी हैड अ चैट इन द मीटिंग एंड या वी हैव टू कीप अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड द अटैकिंग माइंडसेट, द वे वी प्लेड, द वे वी डोमिनेटेड इन दिस गेम, आई थिंक दैट वाज सुपर। स्टार्टिंग आई टेक सम फ्यू बॉल्स, 8-10 बॉल्स टू सी हाउ द विकेट इज बिहेविंग, अबाउट द बॉलर इज डूइंग, सो आई ट्राई दैट एज मेनी एज बॉल आई प्ले एंड आई ऑलवेज लाइक टू पुट बॉलर अंडर प्रेशर।
0: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी को खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का एक और मौका होगा, क्योंकि गुजरात 29 मई को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच के विजेता टीम के साथ खेलेगी। अब सीधे रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां एचएस प्रणॉय ने कोर्ट में अपना दमखम दिखाया। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणॉय ने आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी होंगी। एक नजर आज के खेल प्रदर्शन पर।
3: विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणॉय ने एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी पर 10-21, 21-12, 21-18 से जीत हासिल की। प्रणॉय ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 21-12 से गेम जीता। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 5 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। क्रिस्टी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में यह प्रणॉय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणॉय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लॉ किंग यू से भिड़ेंगे। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी वांग टीएनसी और लिम च्यू सियन की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराया। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: बैडमिंटन से चलते हैं रेसलिंग कोर्ट की ओर, जहां रेसलिंग में कल भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम वियतनाम के दनांग में हुए अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी है। भारत कुल 27 पदक के साथ पहले, किर्गिस्तान दूसरे, जबकि कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
4: भारतीय टीम ने फ्री स्टाइल में

0: ऐतिहासिक जीत के साथ अपने कॉन्टिनेंटल कैंपेन का शानदार अंत किया। भारतीय टीम ने फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कैटेगरी में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्री स्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 9 पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। अक्षय टी ढेरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। इस लय को कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने आगे बढ़ाया। दीपक राठी, पुनीत कुमार और लैकी ने कड़ी मेहनत से रजत पदक जीत कर टीम की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया, जबकि दीपक बेरवाल और मोर सचिन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत की महिला पहलवानों ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। महिला टीम ने शानदार 6 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री, पुलकित, मानसी और काजल सभी ने अपने अपने टाइटल मुकाबलों में तकनीकी बेहतरी दिखाई। नेहा और स्वीटी ने रजत पदक जीते, जबकि अमृता और अहिल्या ने कांस्य पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारतीय पहलवानों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही 8 मेडल जीतकर एक मजबूत नींव रखी। सुमित 63 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे आगे रहे। सूरज और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। नीरज पटेल, सचिन, रोहित बुरा, रोहित और हरदीप ने कांस्य पदक जीतकर इस शानदार प्रदर्शन में और इजाफा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप उठाना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी कामयाबी है और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर 23 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अब सबकी निगाहें अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर होंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: तीनों स्टाइल में हमारे एथलीटों ने साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब सीधे रेसलिंग से चलते फ्रेंच ओपन की ओर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में शानदार वापसी करते हुए क्लेमेंट टैबोर को हराया। 4 बार की चैंपियन इगा स्वैतिक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्वैतिक ने 35वीं रैंकिंग वाली सारा बेजलेक को 6-2, 6-3 से हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त पेलिंडा बेचिच ने कैटी मैकनेली को 6-4, 6-0 से हराकर अगला दौर में प्रवेश किया।
0: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबोर को 6-1, 6-3, 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल हैं। इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3 सेट में कुल 40 विनर्स लगाए और उन्हें एक भी ब्रेक प्वाइंट का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया, जब सिनर ने बेहद आसानी से अपने रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया। पहले उन्होंने बेस लाइन के काफी पीछे से एक फोरहैंड स्क्वैश शॉट लगाया और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार बैकहैंड विनर लगा दिया। रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है और ऐसा करने वाले वह अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस प्रतियोगिता में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें यूकी भांबरी पर होगी, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। जाने माने निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सिंह ने अपने शानदार करियर में 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में उस शख्सियत की बात करने का, जिन्होंने अपने खेल, अपनी सोच और अपनी दमदार आवाज से भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 27 मई 1962 में जन्मे रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में नई ऊंचाइयां दी। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बनकर उन्होंने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
2: We are in the state of Dhaka, in Ranchi, home to the legendary Mahendra Singh Dhoni. Dhoni finishes off and starts a magnificent strike into the crowd. India lives.

0: and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
1: That's huge. That is a biggie. It's out of here. This is in the air again. Here's Longo. Three in a row. It's four in a row.
2: स्पोर्ट्स कैन की ओर से रवि शास्त्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है।

0: समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। Three major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology.
4: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
2: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. In a social media post, the Prime Minister said the CCEA's decision will make the delivery, logistics and transportation arrangements under the PDS more transparent and efficient, while also speeding up the resolution of complaints. Home Minister Amit Shah also hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganganagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today, while several cities including Jaisalmer, Bikaner and Churu witnessed temperatures above 46 degrees Celsius. Night temperatures also remained high in many parts of the state. We have a report.

0: redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
1: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए. एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रूपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशन विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे.
0: सो लक्ष्मी, इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम एंड यस, ऑफ कोर्स एक्विटी एंड इंक्लूसिविटी आर द की पिलर्स ऑन विच दिस इज बेस्ड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, बट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी हाउ डू यू सी दैट वी कैन मेक दिस मोर सस्टेनेबल, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली अ ब्रिज reform that was brought in, but it is still continuing. So do you see sustainability as something that we really need to consider long term?
2: Scheme has been implemented for so many years. Food Security Act was 2013. It's a act, illegal entitlement to subsidized food grains was given to 2/3 of India's population. From then, you know, from 1 rupee to 2 rupee to now, you know, per kg to free distribution of grains, we have traveled a long journey. In that journey, there have been many reforms from time to time that has been taken so that to address the leakages, so that to address the eligible beneficiaries, get the food grains. These have been the key elements of this whole idea of welfare scheme. So to that extent, we've sustained for so long, and the adoption of technology will further enhance the sustainability and ensure the right person gets the food, and the government also saves the money. It's all taxpayers' money which goes as subsidy. So that is also saved with the use of technology, reducing the transportation costs and ensuring there is a more of local procurement than moving from one state to another state. All these are towards sustainable implementation of this mega scheme.
0: Right. And do you see any challenges? Because it's huge. Do you see any challenges and what can we do about it?
2: Yes, we are so eagerly adopting the new technologies coming up so fast, and we are adopting it in every scheme. Caution should always be there to what extent this technology can be used and misused. So that particular part, the technology government takes care of it, then it will be easy for implementing and taking benefit of the technology.
0: Lakshmi, this is the tech age, and we shall talk about the role of technology in actually, this is a continuation of schemes which have been lauded, in fact, as great food safety measures which India has taken across the world. Mr. Vaishnav has spoken about this also.
1: तीन बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के. सबसे पहला निर्मल, वो है PDS बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री. करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए AI की टेक्नोलॉजीज का यूज करके PDS के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी. दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए AI इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है. तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे. हर एक फूड ग्रेन के बैग को QR कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका GPS टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, PDS को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट किया जाए.
0: सो इट इज अ कंटिन्यूएशन. हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू बी यूज्ड? डू यू फील दैट समवेयर नाउ व्हेन वी इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द सेम स्कीम्स टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ मोर एंड मोर मेजर रोल?
2: डेफिनेटली, यू नो, द टू स्कीम्स वर नाउ फंक्शनिंग सेपरेटली, एंड द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अंडर वन अम्ब्रेला इज टू रिमूव दैट फ्रेगमेंटेशन एंड सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू ब्रिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन. So when we look back, there were a lot of things which were done manual, and that age is gone. Now every day new technology is coming and integrating in the systems, and to improve transparency, efficiency is need of the hour. So to that direction, this is basically continuation with bringing some new changes in the technology. and technology or option that will improve the efficiency. So in fact, AI and machine learning based will improve identification of eligible beneficiaries, ensuring right person gets the benefit.

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे ही। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की

0: संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवम्बर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे, तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू, कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में, वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में, उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इल्ली

0: इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी। तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि
1: जी
0: विदेशी
1: बिल्कुल
0: मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठे का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित कर दें, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि

0: सिक्योरिटी एजेंसीज है, अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। तो मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस 2-4 दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय है, हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजना।

0: योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? और बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है? ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टूडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर की ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक, जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक, मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन से एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
4: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिये, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और

0: यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
3: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
2: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 97 रन की पारी खेली। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल

0: Munich, 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में करीब 31 लोगों की मौत। जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
2: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: इसके बाद दोनों देशों के मंत्रियों की सह अध्यक्षता में कनाडा भारत निवेश गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पेंशन फंड और बैंकों सहित कनाडा के प्रमुख वित्तीय निवेशकों के साथ साथ दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने हितधारकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के सतत विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय बाजारों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कनाडा में भारतीय समुदाय की शक्ति और भारत कनाडा व्यापार गलियारे को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में अमेरिका का एक दल अगले महीने की पहली से चौथी तारीख तक भारत का दौरा करेगा। इस दौरे का उद्देश्य व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपायों और अन्य कई क्षेत्रों पर चल रही वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित है। इससे पहले भारत और अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के ढांचे पर सहमति व्यक्त की थी। ये ढांचा व्यापक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ताओं के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। भारतीय पक्ष ने पिछले महीने की 20 से 23 तारीख तक वॉशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने अमरीकी समकक्षों के साथ बैठकें की थी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इंकार करने पर रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में इस्लामाबाद की भूमिका बेहद समस्याग्रस्त है। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध और उनकी निष्पक्षता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया है। सीनेटर ने दावा किया कि ये निर्विवाद है कि

0: ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने इसराइल के खिलाफ शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों की पिछली टिप्पणियों को भी चिंताजनक बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनैनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। परिषद को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को पनाह दी है और उनका समर्थन किया है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम भुगतने होंगे।
1: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
2: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते सीमावर्ती तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। ये हमले 16 अप्रैल को अमेरिका की मध्यस्थता से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष रोकने के लिए कराए गए युद्ध विराम समझौते के बाद हुए हैं। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे जटिल सुरक्षा वातावरण के जवाब में खुफिया और जासूसी विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने का संकल्प लिया है। हालांकि नए कानून में संसद द्वारा खुफिया गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है, जिससे लोकतांत्रिक निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून जन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। परिषद की अध्यक्षता सनाए ताकाइची करेंगी और इसमें 9 अन्य कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। नए कानून के तहत जापान के खुफिया तंत्र को केंद्रीकृत किया जाएगा। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि ये घटनाएं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। नेपाल ने विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों को ऑनलाइन कौंसुलर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोफा मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस ऐप के जरिए नेपाली नागरिक और उनके परिवार कौंसुलर संबंधी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। म्यूनिख में ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
3: And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जियन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैम्प दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने मैच पर ध्यान दिया। मैच के बाद ईशा ने कहा कि उन्होंने लगातार अपने प्रशिक्षण पर ध्यान दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की दोबारा पुष्टि की। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति इस्लामाबाद के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। जापान की संसद ने विदेशी खतरों के जवाब में सूचना जुटाने को केंद्रीकृत करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग।

बिल्कुल, जैसा वादा रहा हम भी आ चुके हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम हर श्रृंगार लेके, और मैं हूँ आपके साथ रितिका, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। '92 में आई फिल्म खिलाड़ी का आपने ये गीत सुना, अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में अनवर सागर का लिखा ये गीत और जतिन ललित का संगीत। भाई दिलबर सामने हो तो दिल कहाँ मानने को है ना? तो बस इन्हीं प्यार भरे की गीतों से ये जो कार्यक्रम है वो पिटारा जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बस बने रहिएगा हर श्रृंगार कार्यक्रम के साथ, और अगला गीत दिल है कि मानता नहीं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और कहते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बस बड़ी आरजू थी मुलाकात की। तभी तो कह रहे हैं कि हम मुलाकात तो हमारी आप इन गीतों के माध्यम से हो ही रही है। कैसा लग रहा है? आशा करती हूं कि आपको मजा आ रहा होगा कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोगों के लिए चुन चुनकर हम लेकर आते हैं ये प्यारे से खूबसूरत से रोमांटिक गीतों का पिटारा। कहां पर? हर श्रृंगार में। जी हां, अगला गीत भी लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में, किंग अंकल का।

तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में, जो कि आएगा 11:10 पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना

0: सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: का बताओ।
1: काम सीधा साधा है,
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है,
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा
1: भाई हमको भी पता है और आपको भी पता है कि हम यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर बार बार क्यों आते हैं, क्योंकि यही तो मिलता है एकदम खरा सोना, असली सोना, यानी कि ऐसे खूबसूरत प्यारे से गीत जो कहीं और आपको नहीं मिलते। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत, और अभी जो आपने ये गीत सुना कल आज और कल फिल्म का, शंकर जयकिशन का संगीत, और इस गीत को लिखा नीरज ने और इस गीत को आवाज दी आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार बिल्कुल यूं ही बरकरार रहेगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब मुझे अपनी दोस्त रितिका सैनी को दीजिए इजाजत। गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस

0: इसके बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष
1: वैष्णवी। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सरगोशी करती हुई हवाओं के बीच चांदनी में नहाई इस रात में शुरुआत करते हैं आपकी अपनी महफिल जिसका नाम है निशिकंधा। और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू, स्वागत करती हूं आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है, वो कह के चले कि बस इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, अभी रात बहुत है।

वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, वजह हम ढूंढते हैं तेरे पास आने को, कि दिल बहुत बेकरार है तुझे धड़कन में बसाने को।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ अंजू।

इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं। इस मोहब्बत में किसी सूरत में भी नींद आती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं। कोई शय दिल को बहलाती नहीं तो मैं कैसे सो जाऊं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, मेरी हर सुबह का उजाला तुमसे है, इस दिल का हर एक कोना तुमसे है। तुम बिन तो हम कुछ भी नहीं है हम सफर, क्योंकि मेरी जिंदगी का पूरा फसाना तुमसे है।

पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, पाकर तुम्हें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही बाकी, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी रूह का एक साया हूं मैं।

दोस्तों ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure immeasurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of

जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ, जरा मुस्कुराकर चमन में तो आओ कि ये फूलों के चेहरे भी फिजा चाहते हैं।

क्यों किसी से इतना प्यार हो जाता है कि एक दिन का इंतजार भी दुश्वार हो जाता है। अपने भी लगने लगते हैं पराए जब एक अजनबी जिस पर बहुत एतबार हो जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक शाम आती है तुम्हारी याद लेकर और एक शाम जाती है तुम्हारी याद देकर। कब आएगी वो शाम जो आए तुम्हें अपने साथ लेकर।

पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, पुरानी धुनों को भूल चुका था ये दिल मेरा, आज तूने फिर पुकारा तो फिर उन गीतों को दोबारा से जीना आ गया।

मेरी मोहब्बत सिर्फ लव्स की मोहताज नहीं, मेरी मोहब्बत सिर्फ लव्स की मोहताज नहीं, ये वो एहसास है जो मेरी रूह तक उतर गया है।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रात समय लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिमनिक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जब से देखा तुम्हें इन आंखों ने, दिल बस तेरा ही दीवाना हो गया। अब किसी और की तमन्ना नहीं हमें, तुम्हें सोचना ही जीने का बहाना हो गया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तेरी तो हर अदा हर बात मेरे लिए बहुत खास है। तेरी हर अदा हर बात मेरे लिए खास है। शायद यही प्यार का पहला एहसास है।

मेरे दिल की हर धड़कन, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा ही नाम लेती है। मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा ही नाम लेती है, क्योंकि मेरी मोहब्बत का आगाज भी तुम और अंजाम भी तुम हो।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी माधुरी, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम।

0: में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप, और ये सफर जिसका नाम है हमराही, लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। तो हमराही कौन होते हैं दोस्तों? जब रास्ता मिल जाते हैं और रास्ते में कुछ लोग मिल जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं, हम राह हो जाते हैं, तो वो हमराही कहलाते हैं। और हमराही कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं हमारे बॉलीवुड के डुएट सॉन्ग्स, युगल गीत। तो आनंद लीजिए।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

भाई ये कह देने में फायदा है क्योंकि दिल की बात अगर दिल में रह गई तो सामने वाले को कैसे पता लगेगी। जैसे अब हम बता रहे हैं कि ये जो गीत सुना आपने, ये सुना फिल्म दीवार से किशोर कुमार आशा जी की आवाज में और संगीत आर डी बर्मन साहब का। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म अभिमान से।

आशा और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से, आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।

ये गीत सुना आपने फिल्म आ गले लग जा से किशोर और लता की आवाजों में। और अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं उससे पहले एक शेर भी पहुंचाना चाहते हैं, या कहें कि एक बात कहना चाहते हैं कि वफा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था?

हीरा पन्ना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप लता और किशोर की आवाज में, और समझती हूँ कि आपको ये गीत भी बेहद पसंद आया होगा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही के इस सफर में माधुरी है आप सभी के साथ। मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, मैं कैसे मनाऊं उसे वो नादां है बहुत, गुस्सा करके मुझसे खुद भी परेशान रहता है।

रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का गीत सुन रहे थे आप किशोर और लता की आवाज में। आरडी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत आप तक हमने पहुंचाया। और खजा को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। और मोहब्बत करने वालों का तो यही अंजाम होता है, जहां दुख दर्द है वहीं तो मोहब्बत भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय

0: से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आतंकरोधी दस्ते और विशेष कार्यबल ने संयुक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में कानून व्यवस्था के अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने बताया कि चारों आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने का पता चला। ये सभी संवेदनशील स्थलों की निगरानी, युवाओं की भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य बनेगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। ये बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance and Ration Support, Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS has been cleared in the 16th Finance Commission Cycle Award Period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the nature effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi yesterday, Mr. Modi asked the states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed the 7 critical infrastructure projects across the railways, power, road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. The Prime Minister also underlined that the delay in the implementation of public projects leads not only to the cost escalation, but also deprives citizens of timely access to essential facilities and development benefits. Prime Minister also emphasized that innovative use of canal networks should be explored, including installation of solar panels along canals and over canals for clean electricity generation. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has rejected the allegations regarding the award of exam evolution contract to a Hyderabad-based educational technology company, Coempt EduTech. In a social media post, the CBSE said that the allegations are erroneous, misleading and not based on facts. The board said that it has followed the general financial rules protocol scrupulously in the awarding of the contract to the agency. It informed that the board floated the RFP for digital evaluation of answer books for board exams 2026 on Central Public Procurement Portal in August last year and awarded the contract to the qualified bidder. The Africa Centres for Disease Control and Prevention, Africa CDC, has welcomed the emergency pharmaceutical supplies donated by India to support the ongoing response to the Bundibugyo Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. In a social media post, Africa CDC said that the supplies include essential diagnostics, therapeutics, infection prevention and control measures, and case management support that will soon be deployed to affected communities in eastern Congo. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminative match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा लेकर माधुरी है आज की सुबह आप सभी के साथ। नमस्कार।
1: दुख हो या सुख जब सदा

दुख तो अपना साथी है ही, लेकिन दुख ये भी कहता है कि चाहे रात जितनी भी लंबी हो दुख की, सुबह जरूर आती है, खुशियां जरूर लाती है।

जिंदगी के सफर में यूं तो बड़ी सारी समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीवन तो यही है। जीवन में जहां रात है वहां दिन है, शाम है तो सुबह है, पहाड़ हैं तो पठार भी हैं, और यही जिंदगी की रीत है कि खुशी आती है, गम आता है, और फिर से एक बार अपनी मेहनत से इंसान खुशियों को समेट लाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह के 4:25 और हो चुके हैं पूरे 46 सेकेंड। ये सफर है अरुणिमा का। जीवन में जब भी कभी मौका मिले तो आप सारथी चुनिएगा, स्वार्थी नहीं।

कभी छोटी तो कभी बड़ी बातों पर गुस्सा हम सभी को आता है। कभी बच्चों पर तो कभी बड़ों पर तो कभी बूढ़ों पर गुस्सा हम सभी को आता है। पर जिसने अपने क्रोध पर अंकुश नहीं लगाया उसे नियति उससे पहले पराजित करती है। तो गुस्सा तो आता है लेकिन उस पर अंकुश भी जरूरी है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है अरुणिमा का। याद रखिए, इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जो कोशिश करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: दिल से हार न मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है।

रहे। कुछ न कुछ बात तो हम सभी में होती है, गलत लोग सबक बन जाते हैं, अच्छे लोग याद बन जाते हैं, और आप क्या बनते हैं ये तो आपके हाथ में है।

हर उम्मीद की एक छोटी सी कहानी होती है और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। और जब फूलों की तमन्ना होती है तो जरूर हमें कुछ न कुछ कांटे भी चुभते ही हैं।

0: कर आया सब।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये

0: पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400 गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 3रा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में BSF चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य में सीमा के लगभग 1600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobar Dhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that the rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. The Supreme Court Collegium recommended the elevation of Chief Justices of 4 High Courts and Senior Advocate V. Mohanna as judges of the Apex Court. According to a statement uploaded on the top court's website, the Collegium, headed by Chief Justice of India Surya Kant, held its meetings on May 22nd and May 27th. It has recommended the elevation of Chief Justice of Punjab and Haryana High Court

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और देखिए ना, बाहर भोर हो चुकी है। भोर सुहानी लेकर माधुरी है आप सभी के साथ, और माधुरी कहती है आप सभी को सुप्रभात।

0: सत्य सच जिससे जीवन सुखद और शांत होता है। हम सभी एक दूसरे से सत्य सुनना चाहते हैं, पर सत्य सुनना जितना चाहते हैं उतना सत्य हमें कहना भी होता है। और ये सच है कि हर व्यक्ति का अपना अपना सच होता है।
1: मैंने

जी हाँ, हर किसी का अपना सच है। ये जरूरी नहीं कि जो हमारा सच है वो सभी के मानकों पर खरा उतरे, और ये भी जरूरी नहीं कि सबका इस संसार को देखने का अपना तरीका है। तो इसीलिए सबका सच भी अपने अपने तरह का सच है। ये अलग अलग नजरिया ही हमारे सच को अलग अलग कर देता है। इसी आधार पर सब अपने सत्य की परिभाषा बनाते हैं, गढ़ते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सच है कि हम सभी सच ही तो सुनना चाहते हैं।